ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। सवेरे के 5:57 होने को हैं। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 566.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सवेरे के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान

0: जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस, एपिसोड संख्या 10, स्वर शोभा जोशी के हैं।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जय सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मा अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस एपिसोड संख्या थी 10। स्वर शोभा जोशी का था। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। इस कार्यक्रम में लीजिए पहला भक्ति संगीत, आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में, बोल हैं रविंद्र पठानिया के।

इसी भक्ति रचना के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सुविचार। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आइए अब सुनते हैं अगली भक्ति रचना, जो कि हरिहरन की मधुर आवाज में है।

श्रोताओं, लीजिए अगली भक्ति रचना आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। इस रचना के बोल लिखे हैं किरण मिश्रा ने और शेखर सेन ने।

भक्ति संगीत की कड़ी में लीजिए अगली भक्ति रचना आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण की आवाज में, बोल और गीत दोनों ही हरिओम शरण के।

हरिहरन की मधुर आवाज में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी, और इसी के साथ भक्ति रचना का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर। आइए अब आनंद लिया जाए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत की कड़ी में लीजिए पहला गीत, आपको सुनवाते हैं नास्तिक फिल्म से। मधुर आवाज है प्रदीप की और इसे संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

धूल का फूल फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत एन दत्ता का।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म आदमी और इंसान से महेंद्र कपूर और समूह की मधुर आवाज़ें थी। साहिर लुधियानवी ने इस गीत के बोल लिखे और संगीत था रवि का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। माफ़ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सवेरे के 7 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

सुप्रभात दोस्तों, आकाशवाणी के इस सुहाने सफर में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सदाबहार नगमे, और उसके साथ ही करेंगे हम प्यारी प्यारी बातें। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बातों के बिना गीत अधूरे हैं और गीतों के बिना हैं बातें। तो हो जाए कुछ बातें कुछ गीत। मैं आपकी रेडियो सखी पूजा जोशी आज आपके लिए

कराई हूँ प्यारे प्यारे नगमे, और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में। तो आइए इस सुहाने सफर में आज हम सुनेंगे ये पहला नगमा जो कि हमने लिया है रजनी गंधा फिल्म से। तो आइए आप और हम मिलकर आनंद लेते हैं इस प्यारे से नगमे का।

दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई महान दिग्गज लोग हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं, जबकि उनके द्वारा लिखे गए गीत और फिल्म में करके सितारे सुपरस्टार्स बन गए हैं, जबकि उन सितारों को सुपरस्टार बनाने के पीछे किसी और ही कलाकार का हाथ रहा है। ऐसे ही गीतकार हैं योगेश गौड। जी हाँ, जिनकी लाइफ सरल नहीं रही है। इस महान गीतकार ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे और हमेशा के लिए अमर हो गए। उनके द्वारा लिखे गए गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं, सुनते रहते हैं। हालांकि उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे हमेशा से बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, जिन्होंने अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। तो आइए ना, आज इस सफ़र में हम बातें करेंगे योगेश के लिखे गीतों के बारे में और उन्हें आज याद करेंगे।

दोस्तों, गीतकार योगेश ने हमें सदाबहार अमर गीतों की सौगात दी है। न जाने कितने ही लोग आज भी उनके गीतों को सुनकर अपना मन बहलाते हैं, उनके गीतों को गुनगुनाते रहते हैं। ये गीत भले ही पुराने हो गए हैं, लेकिन उनकी मधुरता, उनकी मिठास तन मन को भाव विभोर कर देती है। तो आइए ना, सुनते हैं उनका लिखा एक और गीत फिल्म अभिमान से।

आइए अब आपको एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जिस गाने के दो संस्करण थे, एक लता द्वारा और दूसरा किशोर द्वारा। पहले संस्करण में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मुंबई की बारिश में भीगते नजर आते हैं, जबकि दूसरा संस्करण एक समारोह में फिल्माया गया था। आरडी बर्मन ने राग किरवानी में संगीत दिया था। गीत के बोल थे रिम झिम गिरे सावन। जी हाँ, ये एक बहुत ही उम्दा गीत है जो सभी की जुबां पर कहीं ना कहीं रचा बसा है। ये गाना आज भी बारिश के गानों की प्लेलिस्ट में अक्सर शामिल रहता है। तो आइए सुनते हैं मंजिल फिल्म से ये गीत।

उसमें कोई रुचि नहीं थी, उनकी रुचि थी कविताओं में। जी हाँ, वे हिंदी कवित्रियों में रुचि ने उन्हें हिंदी कविता की आकर्षक दुनिया से परिचित करवाया था। दोस्तों, वे मात्र 16 बरस के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, वे एक इंजीनियर के घर में जन्मे थे और उनके पिता ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो घर में कमाने वाले थे। अब उनके ऊपर कितना ही बोझ आ गया था घर को संभालने का इतनी कम उम्र में, और वे इसीलिए मुंबई चले गए जहां उनके चचेरे भाई वजेंद्र गौर, जो एक संवाद लेखक थे, और वे वहीं काम करते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अकेले ही सब कुछ संभालना है। आपको बता दें कि अंधेरी स्टेशन से लगभग 45 मिनट की दूरी पर एक बस्ती में मात्र 12 रुपए प्रति माह के किराए पर एक झोपड़ी में हमारे गीतकार योगेश गौड़ रहा करते थे। वहां बिजली या पानी नहीं था, केवल एक कुआं था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए अयोग्य होने का गहरा संदेह उनको सता रहा था। दूर दराज के कल्याण और क्रॉफर्ड बाजारों में छोटे छोटे काम भी उन्होंने किए। चक्रधारी जैसी फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में भी उन्होंने काम किया, और अत्यधिक शारीरिक तनाव ने उन्हें काफी बीमार भी कर दिया था। तब तक उन्होंने लेखन के बारे में नहीं सोचा था। तो आइए ना, उनकी फिल्म छोटी सी बात का एक और लिखा गीत आपको सुनवाते हैं।

छोटे मोटे लेखन कार्य करते हुए और चौल में रहते हुए योगेश ने अपनी डायरी में कविताएं लिखना बंद नहीं किया, जिसकी बदौलत उन्हें रॉबिन बैनर्जी की फिल्म सखी रॉबिन में गीतकार के रूप में अपना पहला काम मिला। जी हाँ, उनके जीवन में तब एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी से हुई, जो अपने मित्र और गीतकार शैलेंद्र की मृत्यु के बाद एक गीतकार की तलाश में थे। उन्होंने योगेश से फिल्म आनंद के लिए दो गाने लिखने को कहा, जिसमें उनके सह कलाकार सह गीतकार थे गुलजार। फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी बेहद ही प्रभावित हुए, और क्यों ना होते। योगेश का गीत जिंदगी कैसी है पहेली मुखर्जी के किरदार आनंद के सार को बखूबी दर्शाता है, जो अपनी परिस्थितियों का शिकार है लेकिन जीवन को पूरी तरह से जीना चाहता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म आनंद से ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हैं सूर्य नगरी चैनल से और कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। और इस कार्यक्रम में

आज हम बातें कर रहे हैं गीतकार योगेश गौड़ के बारे में और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के लिखे प्यारे प्यारे नगमे और कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बातें और उनको याद। क्या आपको पता है कि आनंद फिल्म की शुरुआती क्रेडिट्स में जिंदगी कैसी है पहली गाना बैकग्राउंड में बजने वाला था। राजेश खन्ना ने ही इस स्क्रीन पर गाने की जिद की थी। उन्हें लगा कि हम इतने खूबसूरत गाने को बैकग्राउंड में रखकर बर्बाद कैसे कर रहे हैं, और वो सही थे। जी हाँ, जब ये गाना फिल्म में लिया गया तो हिट साबित हुआ। और उसी तरह से आनंद फिल्म का एक और बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत

फिल्म का एक और बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत गीत है। ये गीत एक साधारण सूर्यास्त को एक खूबसूरत शाम में बदल देता है। तो आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का ये एक और प्यारा सा नगमा, जो कि लिखा है योगेश गौड़ ने।

दोस्तों, 60 और 70 के दशक में योगेश गौड़ अपनी लेखन को लेकर खूब सुर्खियों में रहते थे। उनके गाने इतनी सादगी और शानदार तरीके से लिखे होते कि आम लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। उनके लिखने का अंदाज इतना निराला होता था कि लोग उनके गीत के बोल में अपनी ही कहानी पढ़ लिया करते थे। गाना सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता था कि ये गीत उन्हीं के लिए लिखा गया है। यूं कहें तो योगेश के गाने सुनते हैं, मन का हर कोना खिल उठता है। तो आइए ना, सुनते हैं उनका लिखा एक और खूबसूरत नगमा।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो।

श्रोताओं, भले ही योगेश गौड़ का नाम साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, शैलेंद्र और आनंद बख्शी जैसे महान कवियों की श्रेणी में ना आया हो, फिर भी योगेश ने अपनी कलम की विलक्षणता से इस दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। केवल वही ऐसे गीत रच सकते थे जो जीवन की सामान्य घटनाओं में भी सुंदरता को समेट लेते थे। फिल्म हंसते खेलते से सुनते हैं उनका लिखा ये गीत।

दोस्तों, 1975 में आई फिल्म मिली का सदाबहार गीत मैंने कहा फूलों से हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे और सुकून भरे गीतों में से एक गीत है। ये गाना प्रकृति की सुंदरता और जीवन को सादगी से जीने का संदेश देता है। जी हाँ, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं एसडी बर्मन और गीतकार हैं योगेश। इस गीत के बोल प्रकृति से जुड़े संवाद पर आधारित हैं। इसमें नायिका जया भादुरी फूलों, मौसम और कांटों से बातें करती है। पूरी धुन में एक अनोखी सादगी है जो सुनने वाले के मन को शांत कर देती है। इस गीत को फिल्माते समय जया भादुरी का मासूम अंदाज और बच्चों के साथ का जो स्क्रीन पर शेयर करने का प्रेजेंस था, वो बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो आइए सुनते हैं मिली फिल्म से ये गीत।

योगेश ने बॉलीवुड के कई दिग्गज डायरेक्टर और एक्टर्स की फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे। जी हाँ, आनंद, मिली और कितनी ही फिल्मों में मंजिल, रजनीगंधा, कितनी ही फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। बेवफा सनम योगेश की आखिरी फिल्म थी। जी हाँ, इस फिल्म में योगेश ने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे। ये गाने आज भी उतने ही सुपरहिट हैं जितने रिलीज के समय थे। आज भी ये गीत, उनके लिखे गीत हमारे जहन में रचे बसे हैं। हम आज भी इन्हें गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनना पसंद करते हैं और उनकी याद में लीजिए सुनते हैं उनकी आखिरी फिल्म बेवफा सनम से उनका लिखा ये गीत।

श्रोताओं, गीतकार योगेश गौड़ की आज पुण्यतिथि है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। आज उनके लिखे गीतों पर हमने चर्चा की है और उनके लिखे गीत हमने सुने हैं। ऐसे महान गीतकार हमारे जहन में, हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। और इसी के साथ अब कार्यक्रम की समाप्ति की घड़ी आ गई है। अपनी रेडियो होस्ट दोस्त पूजा जोशी को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से

0: निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटन्स पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान

0: और ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। साल 2026 का 149वां अंक लेकर हम हाजिर हैं। इस समय

0: नमस्कार और इस वक्त नमस्कार की पूरी क्रिएटिव टीम आज यानी कि 29 मई का अंक लेकर आपके लिए हाजिर है। इस वक्त ट्रांसमीटर पर मौजूद है प्रकाश पवार और सीएल सोनी। कंट्रोल रूम में इस वक्त तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद हैं प्रवीण कुमार। एचपीडी पे अनाउंसर ऑन ड्यूटी पूजा जोशी और वहीं एफएम के कंसोल से साथ दे रहे हैं अनाउंसर ऑन ड्यूटी कल्याण विश्नोई।
1: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में कोऑर्डिनेशन किया है राजेश लामरोड ने। इस प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं संजय व्यास। पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ बहुत सारी जानकारी और सुरीले गीतों के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
0: स्वाति बंसाली और बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर करेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: जिंदगी का एक नया दिन बड़ा ही खूबसूरत और उजला दिन, और एक सवाल कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अगर इंसान चाहे तो खूबसूरती उसे आंखों से नज़र आ सकती है, अपनी ज़िंदगी को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी ज़िंदगी में हर अच्छाई को देखें, बुराई की तरफ देखकर एक सीख लें और आगे बढ़ जाएं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी।
1: बिल्कुल, और ये खूबसूरती ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं उनमें भी तो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, हमें महसूस भी होते हैं। सोचिए ना कि ज़िंदगी में अगर ये इतने अलग अलग जो गम और खुशी के रंग हैं ये ना बिखरे होते तो ज़िंदगी कितनी नीरस हो जाती। तो बिल्कुल, और हम भी अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं तो इन सारे रंगों को एक साथ लेकर ही तो चलते हैं। आज याद आ रही हैं कुछ पंक्तियाँ जो गुलजार साहब ने लिखी थी कि उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। बिल्कुल, ये वक्त है जो गुजरता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ज़िंदगी में सभी को साथ लेकर चलने की सीख देता जाता है। बिल्कुल, बातें शेयर कर रहे हैं आपसे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ।

0: का रंग चढ़ता है तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। सुबह होती है तो लगता है कि ये जो ज़िंदगी की रौनकें हैं ये शोहरत से है, दौलत से हैं, लेकिन जब शाम ढले घर लौटते हैं तो लगता है सुकून भरी ज़िंदगी ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ा ख़जाना है। बस ज़िंदगी में सुकून ढूंढते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर कोई व्यक्ति करीब आकर हमसे जब हमारे हाले दिल पूछता है तो भी दिल बड़ा सुकून से भर जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे अभी कुछ देर पहले आप मेरा हाल पूछ रही थी कि तुम आराम से तो आई हो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सोचिए ना, जब कोई इतना सा अपनापन दिखा देता है तो कितना गहरा जो सुकून है वो दिल में पहुंचता है कि हाँ, इस भीड़ भरी दुनिया में, इस पूरी लोगों की जो ये है दुनिया, इसमें कोई अपना है जो हमारे लिए सोचता है। अगर सिर्फ हम अपने अपने लिए सोचते रहें तो कितने स्वार्थी हो जाएंगे ना। जब
0: तभी
1: सिर्फ
0: तो कहते हैं ना स्वाति, कि दुख के दिनों में किसी का हाथ राहत का साथ दे जाता है।
1: बिल्कुल, और अगर कोई एक ऐसा कंधा मिल जाए जिस पे सर रख के दिल में सुकून पहुंचे तो फिर क्या ही बात है।
0: जी, आंखों में देखकर भी सुकून लिया जा सकता है, कंधे पर सिर रखने की नौबत बाद में आए।
1: बिल्कुल, और एक सुकून हम अपने श्रोताओं तक भी पहुंचा सकते हैं उनको प्यारे प्यारे सुरीले गाने सुनाकर।

0: जनाब, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी से दिल का चैन रूठ जाता है और फिर दिल ये कहता है कि कभी कहीं मुलाकात हो तो हमारा सलाम कहना।
1: बिल्कुल। और हमारी ये जो मुलाकात होती है हमारे उन श्रोताओं के साथ जो हमारे को दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन हमारे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि जब भी

0: हम आपसे अपनी बात शेयर करते हैं तो वो हमारे भी दिल से निकलती है और सीधा पहुंचती है आपके दिल तक।
1: जी
0: ठीक
1: हाँ, दिल में जब राहतें होती हैं या चाहतें होती हैं तो जिंदगी में बहुत सारी राहतें होती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूबसूरत सी बात आपने कही है। और बिल्कुल अब ये जो चाहते हैं ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि आपको सुनवाया जाए एक खूबसूरत सा गीत ताकि दिल को पहुंचे थोड़ी सी राहत।

0: बड़ा ही खूबसूरत गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया। उसमें एक लाइन थी जिसमें कहा गया था कि मरहम दिल पे लगाया। बस श्रोताओं, कुछ इस तरह से सुकून ज़िंदगी हमने हासिल कर ली, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से मोहब्बत कर ली।
1: क्या बात है। और ये जब माफ़ी होती है ना, ये इतने ज़्यादा ज़ख्मों को भर देती है कि कोशिश तो वैसे ये करनी चाहिए कि हम जाने या अनजाने भी किसी के दिल को ना दुखाएं, लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और अगर हो जाए तो स्वीकार करने में क्या शर्म है। स्वीकार कीजिए, माफ़ी मांगिए, तो देखिए ना ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, जीने में सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम मन में दुराव रखते हैं, छिपाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उलझने बढ़ती ही तो जाती हैं।
0: भाई, मोहब्बत में मुस्कुराहट की अपनी कीमत होती है, तो कभी कभी रुसवाई से भी सामना हो जाता है। लेकिन बस यही है कि जहाँ पर रूठने

मनाने का सिलसिला चलता रहे ना, तो वहाँ पर ताजगी भी बनी रहती है। बस एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल जाता है कि तुम मुझसे इसी तरह से रूठा करो, मैं इसी तरह से तुम्हें मनाती रहूँ, मनाता रहूँ। बस जिंदगी इसी तरह से चलती रहे और ये कार्यक्रम भी इसी तरह से चलता रहे। एक और गीत अपने श्रोताओं की नज़र करते हैं।

0: बिना ना हो जीना, बस ये दुआएं मांग लूं। बिल्कुल, हम भी तो यही दुआएं मांगते हैं कि आपका और हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे। और ये जो साथ है, ये हर रोज नमस्कार में हम जब नई जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं तो इस साथ में भी तो ताजगी आ जाती है। याद आती है वो लाइनें जहाँ कहा गया कि जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को तो पहले प्यार से चिपकाइए। बिल्कुल, तो जब बिखरे पन्ने चिपकने लगते हैं, एक साथ होने लगते हैं, तो जिंदगी की नई खूबसूरत किताब सामने आने लगती है।
1: जी, और उसमें नाम लिखा होता है मोहब्बत। और कहते भी है ना कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है। गौर कीजिएगा, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, बिखरे तो जमाना है।

0: श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और नमस्कार कार्यक्रम में लौटेंगे ठीक 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सवेरे के 9 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो कि हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।

0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांव तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झाबर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
2: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने

0: सादगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुंचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
1: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे ये चांद का घर लगता है। चांद मेहराब पे सोई हुई ये कायत है, बेवजू आंखें हैं, पड़ते हुए डर लगता है।
0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ हाजिर हैं गुलनाज खान और
1: स्वाति वंसाली, और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। सबसे पहले जानते हैं इतिहास के आईने में दिखाई कैसे देता है आज का दिन।
0: साल 1658, आगरा के निकट सामुगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था आज के दिन। ये लड़ाई मुगल साम्राज्य की दिशा बदलने वाली घटनाओं में गिनी जाती है। श्रोताओं, 1851 में अश्वेत महिला अधिकार कार्यकर्ता सुजनेर ट्रुथ ने अपना प्रसिद्ध भाषण आज ही के दिन दिया था, क्या मैं महिला नहीं हूँ। एक्रॉन महिला अधिकार सम्मेलन में उन्होंने ये भाषण दिया था। ट्रुथ पहली अश्वेत महिला थी जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अश्वेत महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की मांग उठाई थी। उन्होंने अपना जीवन समान अधिकारों के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उन्हें 19वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली अश्वेत महिला वक्ताओं में माना जाता है।

0: 1885 में जूता बनाने की मशीन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था आज के दिन। इस लास्टिंग मशीन को जॉन मेटजेलिगर ने विकसित किया था और अमेरिका के लिन शहर में अपने जूता बनाने वाले आविष्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। मेटजेलिगर ने जिस मशीन का आविष्कार किया था वो बड़े पैमाने पर जूते बना सकती थी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तकरीबन 75 जोड़ी जूते बनाए, जो हाथ से काम करने वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी।
1: सन 1990, दिन आज ही का यानी कि 29 मई का, आज ही का वो दिन था जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे बोरिस येल्सिन। तब ये सोवियत संघ देशों का समूह था, लेकिन बाद में इसका विघटन हो गया और सभी देश अलग अलग हो गए थे।
0: सन 1922 में आज ही के दिन इक्वाडोर को आजादी मिली थी। 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। बर्फ से ढकी ऊंची और दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की थी। इस उपलब्धि को याद रखने के लिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। '68 में भारत के दिग्गज पहलवान दारा सिंह ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अपने नाम की थी आज ही के दिन। '70 में यूनाइटेड रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था आज ही के दिन।
1: 1999 में नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना हुई थी, और बिल्कुल जब नागरिक सत्ता की स्थापना हुई तो ये दिन नाइजीरिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि जनता जो है वो उसको एक प्रभुत्व मिला था वहाँ के नागरिक प्रशासन में।
0: जी, 1967 से सैन्य शासन के बाद सत्ता लोकतांत्रिक सरकार को सौंपी गई थी और एक तरह से ये नाइजीरिया में लोकतंत्र की वापसी थी। 1999 में डिस्कवरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा था। ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान था। ये स्पेस शटल कार्यक्रम का दूसरा ISS मिशन था।
1: साल 2007 जब जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स घोषित हुई थी, दिन आज ही का था यानी कि 29 मई का। और आज ही का वो दिन था साल 2008 में जब नेपाली सरकार ने राजतंत्र का अंत किया था और घोषणा की थी गणतंत्र की, और तब शाही महलों सहित देश के सभी भागों में जो राजतंत्र के चिन्ह थे वो सभी हटा दिए गए और नेपाल के नए राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। दिन आज ही का था यानी कि 29 मई का।
0: जी हां श्रोतो, नेपाल की संविधान सभा ने 28 मई को देश को आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। इसके साथ ही वहां पर 240 वर्ष पुरानी राजशाही समाप्त हुई थी। सन 2010 में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने चीन के हेनान प्रांत के लुओयांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश्व व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में बने पहले भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया था आज के दिन।
1: और श्रोताओं, इतिहास के आईने में नजर डालने के बाद अब सुनते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 30 मई को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। अतः जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 30 मई को होने वाली जलापूर्ति 31 मई को और 31 मई को होने वाली जलापूर्ति 1 जून को की जाएगी। झालामंड और तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े हुए क्षेत्र, सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों और पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 30 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 31 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 1 जून को

जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार कार्यक्रम में भी अगली कड़ी जोड़ते हैं। दिन विशेष की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के शांति अभियानों में सेवारत पुरुषों और महिलाओं के अदम्य साहस, समर्पण और उन्हें सम्मानित करने और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये दिन है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के महत्व को उजागर करना भी है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा देने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं के साहस और समर्पण को श्रद्धांजलि देना है, सम्मानित करना है और उन शहीदों को याद करना जिन्होंने ब्लू हेलमेट पहनकर दुनिया के संघर्षगत इलाकों में शांति बहाली के लिए काम किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर सन 2002 में एक प्रस्ताव पारित कर 29 मई को इस खास दिवस के रूप में नामित किया था। श्रोताओं, 29 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1948 में

0: मई को अरब इसराइल युद्ध के बाद युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति रक्षा मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की शुरुआत फिलिस्तीन में हुई थी। 11 दिसंबर सन 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प द्वारा इसे नामित किया गया था। यूक्रेनी शांति रक्षक संघ और यूक्रेन सरकार के संयुक्त राष्ट्र महासभा से आधिकारिक अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस दिन को पहली बार आधिकारिक तौर पर सन 2003 में मनाया गया था। भारत की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सबसे बड़े और सबसे पुराने सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है। भारतीय सैनिकों ने अब तक दुनिया भर में कई जटिल मिशनों में हिस्सा लिया है। इस योगदान के दौरान तकरीबन 160 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने वैश्विक शांति की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इस दिन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भारतीय सेना के अधिकारी संयुक्त राष्ट्र और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस साल का थीम है शांति स्थापना का भविष्य।
1: बिल्कुल, और न्यूयॉर्क में भी आज ही के दिन विशेष समारोह भी आयोजित किया जाता है जहां पर जितने भी बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने शांति स्थापना में अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हें मरणोपरांत डैग हैमरशॉट मेडल से सम्मानित किया जाता है। और बिल्कुल, जब शांति की बात आती है तो स्थिरता की भी बात आती है, क्योंकि शांति और स्थिरता का जो सबसे प्रमुख प्रतीक विश्व में प्रकृति ने दिया है हमें, वो है हिमालय की पर्वतमाला, और इस हिमालय पर्वतमाला का सरताज है माउंट एवरेस्ट। इसे कहा जाता है सागरमाथा भी नेपाल में, और वहीं तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और आज का दिन खास तौर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में, क्योंकि आज ही का वो दिन था जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों ही दुनिया के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पर पहली बार सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की थी। और जब एडमंड हिलेरी का निधन हुआ तो तब नेपाल सरकार ने साल 2008 से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। खासतौर पर साहस और सहन शक्ति का सम्मान करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, विशेष रूप से नेपाल के काठमांडू और एवरेस्ट के क्षेत्रों में, वह और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और दुनिया की जो ये सबसे दुर्गम चढ़ाई है, इसमें मनुष्य के विजय के साहस की और इस दुर्गम स्थानों को जो फतेह करने की उसकी जिजीविषा है, उस साहस का सम्मान करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो आज का दिन हिमालय पर्वतमाला के नाम और माउंट एवरेस्ट के नाम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी, कई बार ऐसे होता है कि एक साथ हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं और नमस्कार कार्यक्रम में बहुत सारी बातों के बीच एक काम की बात।
2: बिल्कुल, और ये जो खास काम की बात है हमारी, ये खास तौर पर जुड़ी हुई है कचरा संग्रहण से। किस तरह से हम जन भागीदारी द्वारा कचरा संग्रहण में सहयोग कर सकते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, बस इसी की आज हम बात कर रहे हैं। और ये हम सब के लिए बहुत काम की बात है, क्योंकि एक स्थायी और स्वच्छ वातावरण की रीढ़ जो है वो ये जन भागीदारी ही बनती है। नागरिकों का सक्रिय सहयोग अगर मिलता है और जागरूकता होती है, तभी सफाई अभियान भी सफल हो सकता है। क्योंकि सिर्फ निकाय और प्रशासन जो है, अगर कचरा उठाने का काम करे और जन सहयोग ना मिले, तो काम कुछ अधूरा सा रहेगा। ताली भी तो दोनों हाथ से ही बजती है ना। प्रशासन अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी, तभी कचरे का सही तरीके से निष्पादन भी हो सकता है और प्रबंधन भी हो सकता है। तो जनता को क्या करना है? कचरे को सबसे पहले घर पे ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखें। बहुत छोटा सा काम है, सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता से बहुत आसानी से ही हो सकता है। और एक काम और, थर्मोकोल, पॉलिथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इनका उपयोग करना है? बिल्कुल भी नहीं। कोशिश ये करें कि जब भी बाहर जाएं, अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं। और हाँ, डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, उनके सुचारू संचालन के लिए जो उपयोगकर्ता शुल्क है, उसका समय समय पर भुगतान करते रहे ना, क्या दिक्कत है? वो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो आप भी सही समय पर उनके शुल्क का भुगतान करें। और रसोई का जो गीला कचरा है, घर पे ही उससे खाद बना लें, ताकि कचरा गाड़ी पे भी भार कम हो जाए। और अगर कोई भी आपके आसपास कचरा डाल रहा है या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जला रहा है, तो फिर आप गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन को सूचित भी कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज बहुत आसानी से निभा सकते हैं। और साथ ही साथ 3R के सिद्धांत को अपनाएं, यानी कि रिड्यूस करें कचरे को, रीयूज करें और रीसाइकिल करें। बस, तो और कोई भी अगर आपको शिकायतें हैं या सुविधाएं को जानना है, तो आप नागरिक स्वच्छ भारत मिशन शहरी पोर्टल का उपयोग भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, देश में बढ़ते कचरा संकट को देखते हुए ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार की नीति के साथ साथ जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने का समय आ गया है। इस संदर्भ में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। इसमें केंद्र सरकार के शीर्ष सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें जिला स्तर पर स्पेशल सेल बनाकर निगरानी रखे जाने की भी योजना है। और श्रोताओं, नए नियम के अनुसार घर में गीला और सूखा कचरा, साथ ही विशेष श्रेणी का कचरा रखने के लिए अलग अलग पात्र रखना अनिवार्य होगा। खुले में कचरा डालने वाले पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें खत्म किया जाएगा। सरकार प्रदेश के हर शहर के लिए अलग अलग ठोस कचरा प्रबंधन निस्तारण की नई नीति और रणनीति तैयार करे, उसमें हमें अपनी ओर से भी कदम उठाने होंगे।

0: मन दौड़ने लगता है उन बातों के पीछे जो हमें ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ाती है। बहुत सारी बातें काम की होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बातें खास होती हैं।
1: और आज की जो खास बात है वो ये है कि कल जो हमारे अपने शहर में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया, वो किस तरह से मनाया गया। पूरी दुनिया भर में अमन और शांति की याद दिलाने का ये त्यौहार था। पूरी अकीदत और खुशी के साथ मनाया गया था। त्याग और बलिदान का ये त्यौहार था। कल बड़ी संख्या में सुबह लोगों ने जालोरी गेट स्थित ईदगाह में नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी यहाँ पहुँचे और लोगों को ईद की बधाई दी। और साथ ही साथ जोधपुर शहर की जितनी भी छोटी बड़ी मस्जिदें थी वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुँच कर नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगे। और सोचिए ना, जब एक दूसरे के गले लगते हैं तो भाईचारा, अमन और शांति तो कायम होती ही है। वैसे ये त्यौहार कई मायनों में खास है और एक खास संदेश भी देता है। हर इंसान अपने जान माल को दूसरों की अमानत समझे और उसकी रक्षा के लिए कोई भी त्याग या बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहे। ईद उल जुहा यानी कि अजगा या जुहा का अर्थ है सुबह का वक्त, सूरज चढ़ने से सूरज ढलने के बीच का समय। और रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के 70 दिनों बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। बेटे की कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम द्वारा दी गई थी अल्लाह के हुक्मों पर, इस तत्पर हो जाने की याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। सोचिए ना, आप जब पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भगवान को, अल्लाह को समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह के सवाल मन में नहीं रहते। तो बस यही त्याग और बलिदान मनाने के लिए शहर में, हमारे अपने जोधपुर में अमन और शांति के साथ यह त्यौहार मनाया गया।
0: जी हाँ श्रोताओं, ईद अरबी जुबान का शब्द है जिसका माने होता है खुशी, और अजहा का मतलब होता है कुर्बानी। तो खुशी से की गई कुर्बानी का ये पर्व हमने मनाया, और साथ ही साथ मारवाड़ का कुंभ कही जाने वाली 7 दिवसीय भोगी शैल परिक्रमा यात्रा कल भक्ति, उत्साह और आस्था के वातावरण के बीच बैरी गंगा पहुंची, और ये यात्रा अभी जारी है अपने अगले पड़ाव की ओर। आस्था का संगम हमें देखने को मिल रहा है, और गंगा जमुनी संस्कृति जो हमारी भारत की है उसमें अगर बशीर बद्र साहब की कलम से अगर हम देखें तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो भाईचारा है, ये प्यार मोहब्बत का पौधा सदा हरा रहे।

0: श्रोताओं, आज सारा साहित्य जगत, कला जगत, सांस्कृतिक जगत, कलमी दुनिया उदास मन से, अश्रुपूर्ण आँखों से ये जो कलाम लिखा, जिन्होंने कहा कि दुआ करे ये चेहरा हमेशा खिला खिला ही रहे, लेकिन आज उनके तमाम प्रशंसकों के चेहरे पर आंसू हैं और आज हम सभी का दिल ये दुआ कर रहा है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब की रूह को सुकून मिले। कल एक खबर ने साहित्य जगत में शोक की लहर फैला दी। उर्दू अदब के शानदार शायर डॉक्टर सैयद मोहम्मद बशीर बद्र साहब इस फ़ानी दुनिया में अपने कलाम, अपने यादों का तोहफा देकर रुखसत हो गए।
1: वो आवाज़ खामोश हो गई जिन्होंने जिंदगी के जितने भी रंग हैं, मोहब्बत, तन्हाई, रिश्ते, टूटन, उम्मीद, सभी को सादगी से कागज पर उतार दिया। और वो सादगी इतनी कि जिसमें जिंदगी का फलसफा बहुत खूबसूरती से बयान हो गया। और सिर्फ फलसफा ही नहीं, जिंदगी की तकलीफों को भी उन्होंने कुछ इतनी खूबसूरती से बयान किया कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सोचिए ना, उनकी शायरी में कितनी अजीब सी नरमी थी, धीरे से जिंदगी समझा रहे थे और हमें समझ में भी आ रही थी कि महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।
0: बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और हकीकत को बयां किया है, बड़ी ही सादगी से, दिल से निकली हुई आवाज़ दिल तक पहुंची। और ये आवाज़ और ये अशआर महफिलों में गूंजते रहे तो तन्हाई में भी सुनने वालों के साथ को निभाते रहे। एक जगह लिखते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। श्रोताओं, बस दो मिसरों में पूरे दौर की बदलती तहजीब बयां कर दी और जाते जाते न जाने कितनी बातें लिख गए। और गज़लों में मोहब्बत और ज़िंदगी को उन्होंने नई आवाज़ दी थी, अल्फाजों को एहसास की सबसे खूबसूरत शक्ल दी थी। एक जगह लिखते हैं कि सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होकर भी छूते हुए डर लगता है, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है।
1: और बिल्कुल, और आज भी भले ही उनका शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लिखा हुआ ये शेर आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है जब वो ये लिखते हैं कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो आज उनका

0: जो रूह है वो भी उसी मील के पत्थर को ढूंढने चली गई है जो कभी उनकी आंखों ने देखा ही नहीं। सिर्फ मंजिल पर नजर रखते रखते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादों को, अपनी कृतियों को हम सबके बीच में छोड़ गए, जो उन्हें आज भी हमारे दिलों में अमर किए हुए हैं।
1: और उन्हीं की यादों के ज़रिए उन्हीं के कलाम को हम याद करते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और अगर इसमें अपने जज्बात जोड़ें तो अब तो यही होगा कि कौन कहेगा कि मुलाकात नहीं होती, मिलेंगे तो रोज़ ही, मगर बशीर साहब बात नहीं होगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सप्ताह विशेष में आज हम बात करेंगे, एक किताब का जिक्र करेंगे, हॉरर साहित्य के बेताज बादशाह स्टीफन किंग के मशहूर कृति द शाइनिंग के नाम पर हम आज जिक्र छेड़ रहे हैं। एक ऐसा उपन्यास जो सिर्फ डराता नहीं बल्कि इंसानी तन्हाई, टूटते रिश्तों और दिमाग की अंधेरी सुरंगों का सफ़र भी कराता है। द शाइनिंग मनोवैज्ञानिक हॉरर शैली की एक उत्कृष्ट और कालजयी उपन्यास के माध्यम से आज हम बात करेंगे।

0: ओवरलुक होटल, विशाल बर्फ से घिरा हुआ सुनसान होटल, सर्दियों में पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ एक होटल। कहानी शुरू होती है जैक टॉरेंस नाम के व्यक्ति से। जैक लेखक भी है, लेकिन जीवन भरा है संघर्षों से। शराब की लत, गुस्सा और सफलता बस सभी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। परिवार में पत्नी है वेंडी, बेटा है डेनी। इनके साथ करना चाहता है नई शुरुआत और इसी कोशिश में वो बन जाता है ओवरलुक होटल का केयरटेकर। काम बहुत आसान लगता है ना, पूरी सर्दी सिर्फ होटल की तो देखभाल करनी है, लेकिन बाहर बर्फबारी के कारण कोई आने जाने वाला नहीं होगा। बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है।
1: श्रोताओं, होटल के एकांत और अलौकिक प्रभाव के कारण जैक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वहीं डैनी के पास द शाइनिंग नाम की एक विशेष टेलीपैथिक क्षमता होती है, जिससे वो होटल में छिपी बुरी ताकतों और भूतों को महसूस कर सकता है।
0: और वहीं होटल का एक बुजुर्ग कर्मचारी डिक हैलोरन डैनी की शक्ति को पहचान लेता है और उसे चेतावनी देता है कि होटल में है बहुत कुछ खतरनाक। धीरे धीरे होटल जैक के मन पे कब्जा करने लगता है। अकेलापन, हताशा, भीतर छुपा गुस्सा उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगता है। वहीं मैं आपको सुनवाती हूँ उपन्यास का एक छोटा सा अंश जो उस भयावह वातावरण को महसूस करवाता है। डैनी ने लंबे सुनसान गलियारे की ओर देखा। होटल के कालीन पर उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे दूर कहीं कोई हंस रहा हो। वो रुक गया। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास था। तभी उसकी नजर दीवार पे पड़े एक साए की ओर गई और भीतर डर की एक तेज लहर दौड़ गई। सोचिए ना, ये है स्टीफन किंग की लेखनी की ताकत। सिर्फ डर ही पैदा नहीं करते, बल्कि वातावरण को भी इस तरह से रच देते हैं कि पढ़ने वाला पाठक स्वयं को उस जगह पे मौजूद करने लगता है और उस डर को महसूस करने लगता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, किताब भूत प्रेत की डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर उतारी गई पारिवारिक त्रासदी है। द शाइनिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका माहौल। स्टीफन किंग डर को किसी भूत के चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपे अंधेरे में तलाशते हैं। जैक का धीरे धीरे बदलता व्यवहार, उसका पागलपन की तरफ बढ़ना और होटल का रहस्यमय असर पाठक को एक ऐसी बेचैनी देता है जो किताब बंद होने के बाद भी देर तक साथ रहती है।
0: और ये उपन्यास सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली डर आखिर क्या है। इस सवाल को कहानी के माध्यम से स्टीफन किंग हमारे सामने रखते हैं और होटल स्वयं भी एक पात्र की तरह दिखाई देता है, पढ़ने में आता है। ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं, एक जीवित शक्ति की तरह व्यवहार करता है और द शाइनिंग पढ़ते समय पाठक सिर्फ डरता ही नहीं, मानसिक रूप से कहानी में फंसता भी चला जाता है। एक प्रसिद्ध फिल्म भी इसी उपन्यास पर आधारित बनी थी, निर्देशन किया था स्टैनले क्यूबिक ने। और सोचिए ना, जब लिखा गया कि बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, होटल पूरी दुनिया से कट चुका था, दूर कहीं घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। जैक खाली बार के सामने खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उससे बात कर रहा था। होटल जाग चुका था, अब वो अकेला नहीं था। बस यही है श्रोताओं द शाइनिंग की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ डर केवल दिखाई और सुनाई नहीं देता, बल्कि महसूस होता है। हॉरर साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है और आज भी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। तो अगर आप भी मनोवैज्ञानिक रहस्य, गहरे वातावरण को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो लंबे समय तक मन में बनी रहे, तो ये उपन्यास द शाइनिंग स्टीफन किंग द्वारा लिखा हुआ आज ही जरूर पढ़िएगा।

सन 1977 प्रकाशित हुआ था उपन्यास दशायनी। मानसिक टूटन की, डर की, अकेलेपन की कहानी है और केंद्र में है

0: बिल्कुल श्रोताओं, ये जो खूबसूरत गीत अभी आपको सुनाई दिया था, ये था फिल्म मौसम से, जिसे निर्देशित किया था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, टेलीविजन और फिल्मों में और थिएटर में काम करने वाले प्रसिद्ध रंगकर्मी अभिनेता पंकज कपूर ने।
1: और
0: बिल्कुल
1: आज
0: आज,
1: जन्मदिन मना रहे हैं पंकज कपूर।
0: और साथ ही साथ आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीरा भाई बरोदेकर का, जिन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये भारत की ऐसी पहली महिला कलाकार थी जिन्हें पुरुषों के वर्चस्व के दौर में लोग कॉन्सर्ट में सुनने आए थे। और 15 अगस्त के दिन जब भारत देश आजाद हुआ था तो लाल किले पर खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया था, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। साथ ही साथ आज ही के दिन सन 1906 में जन्म हुआ था हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले निबंध लिखे थे।
1: श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 21वें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर को। आज उनकी जयंती है। और ये वायुसेना के पहले हेलीकॉप्टर पायलट थे जिन्हें वायुसेना प्रमुख बनने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने भारतीय वायुसेना की पहली MI-17 हेलीकॉप्टर यूनिट की स्थापना की थी और 1985 में उसका नेतृत्व भी किया था। साथ ही हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने कवि मदन कश्यप जी को। उनकी कृति दूर दूर तक चुप्पी और अपना ही देश के लिए उन्हें केदार सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथ ही याद कर रहे हैं हुल्लड़ मुरादाबादी को।
0: बिल्कुल, ये भारत के प्रसिद्ध कवि रहे और बहुत सारी व्यंग्य कृतियां भी इन्होंने लिखी हैं, और हास्य को लोगों के जीवन में उतारने का प्रमुख श्रेय जाता है हुल्लड़ मुरादाबादी को।
1: जी, इतनी ऊंची मत उड़ो, क्या करेगी चांदनी, ये अंदर की बात है। और हुल्लड़ का हुल्लड़ जैसी हास्य कविताओं से उन्होंने भरपूर पुस्तकें लिखी और इन्हें कलाश्री और अट्टहास सम्मान, साथ ही हास्य रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। काका हाथरसी पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आज हम हिंदी फिल्म और रंगमंच में अभिनय और इतिहास के पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था, भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर को भी याद कर रहे हैं।
0: और बिल्कुल, इन्होंने अपनी थिएटर कंपनी भी शुरू की थी और बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, और इनका पूरा परिवार जो है वो फिल्मों से जुड़ा हुआ है। और इन्हें देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण और भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। और साथ ही साथ प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश को भी हम याद कर रहे हैं। आज ही के दिन इनका निधन हुआ था, और बहुत सारी फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और उसके अलावा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया। बिल्कुल, चाहे योगेश गौड़ की बात करें या पृथ्वीराज कपूर की बात करें, हिंदी फिल्म जगत को इन्होंने जो अपना योगदान दिया उसे हम भुला नहीं सकते हैं। तो पृथ्वीराज कपूर, मुगले आजम, ये दोनों एक ऐसा अटूट बेजोड़ संगम बने जो आज भी दर्शकों के दिलों में जीवंत है।

एक खूबसूरत जुबान को अक्षरों में ढाला है। विस्तृत और बेहतर सोच के साथ अलग अलग उनकी कविताएं, अलग अलग गीत हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जीवन दर्शन है, दुखी मन है तो उसका मरहम भी मिलता है, अंधेरे में रोशनी की लकीर भी नज़र आती है, जिंदगी की पहेली को सोचते बूझते जीवन के तराने गुनगुनाते हैं, अपने गीतों में जिंदगी का फलसफा बयां करते हैं। गीतकार योगेश।

0: बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ बस आज का नमस्कार यहीं तक। आपका आज का दिन अच्छा ही नहीं गुजरे, बहुत अच्छा। करते हैं यही शुभकामना नमस्कार की पूरी टीम की ओर से और साथ ही साथ आपके दो दोस्तों की ओर से,
1: तो इजाजत दीजिए गुलनाज खान
0: और स्वाति भंसाली को आज के इस प्रोग्राम से
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। आइए अब आनंद लिया जाए लोक संगीत का। लोक संगीत में लीजिए पहली रचना, आपको सुनवाते हैं प्रिया सक्सेना की मधुर आवाज में।

दीपाली साठे की मधुर आवाज में ये लोक रचना भी आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगली लोक रचना। इस मधुर रचना को अपनी आवाज दी है समंदर खान ने और सत्तार खान ने।

ममता सिंह की मधुर आवाज़ में ये लोक रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं राकेश काला की आवाज़ में अगली लोक रचना।

और श्रोताओं, इसी रचना के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में लीजिए पहली रचना, आपको सुनवाते हैं चंदन दास की मधुर आवाज में।

हरिहरन की मधुर आवाज़ में ये गज़ल अभी आपने सुनी। ज़ाकिर हुसैन ने तबले पर संगत की और इस गज़ल के बोल लिखे बशीर बद्र ने।

इस रचना को अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में, और बोल बशीर बद्र के संगीत जगजीत सिंह का ही था।

चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आपने सुनी, इसके बोल लिखे बशीर बद्र ने।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किट बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किट बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
1: किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अजनबी से सुनिए गीत, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सिलसिला से सुनिए गीत, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म घर से सुनिए गीत, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात से सुनिए गीत, मजरूह के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शागिर्द से अभी आपने सुना है गीत मजरूह के बोल। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म तेरे मेरे सपने से सुनिए अगला गीत। इसे लिखा है नीरज ने।

अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जवानी से सुनिए गीत, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

फिल्म नील कमल से सुनिए गीत, मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। बोल है साहिर लुधियानवी के, संगीतकार हैं रवि।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आंधी से। इसे लिखा है गुलजार ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: की जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: रगड़ रगड़ पग धोवे तीर में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। अभिजीत की आवाज में सुनिए ये सुगम संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए ये सुगम संगीत।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत का आखिरी गीत सुनिए उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
2: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाहों, दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं, राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
1: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा एनएटी की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेलमंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से आरटीओ विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे आरटीओ टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक

0: स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषि जगत प्रोग्राम सुनवाला सगला किसान भाई ने दिनेश रणजरा घनमानसु राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आपा खेती बाड़ी का काम काज करे हाँ, कई भांत भांतरी आपा फसल लेवा हाँ, साथ आपा सब्जियारी पैदावार भी लेवा हाँ, कटी आपा नींबू बावा हाँ, अनार बावा हाँ, हरे चारो भी आपा लेवा हाँ। किसान भाई री कोशिश आईज रहे कि भाई जिकी भी पैदावार आपा खेतार महीने लेवा तो उन महीने रोग जी को है वो आप रे नहीं लागे। कई दान देखा आपा कई सब्जियां बावा भी में भी रोग लाग गया करे, तो किसान भाई आप रे कई भात भातरा जी का रसायन है वे काम में लेवे। किसान भाया आज आपने जानकारी देवा के भाई कृषि रसायना रो सुरक्षित उपयोग आपा करा और जोखिम सु आपा बचा। एक बात आवे सगला सु पहला के भाई कृषि रसायन आपा बाजार में जमा खरीदा आपा तो उन भगत भी आपा ने थोड़ो ध्यान रखनो जरूरी है। वे खास बात है कि भाई कृषि विभाग राज्य का अधिकारी है वे आपने खरपतवार ग्रसित जीव खेत है मान लो जैसे कीट रोग रा प्रभावित पौधा है पत्तियां है फल है फूल है आदि रो आप रे निरीक्षण करावे और उनारी सिफारिश रे अनुसार जी कृषि रसायन करे। कई दान किसान भाई कहीं करे सीधे जी की दुकान वे उठो आप रे लेन आवे और जी की भी फसल बायोड़ी है उनरे माते छिड़काव कर दे। तो कहने मतलब वो है कि कोई भी कृषि रसायन आप खरीदा उनसे पहला कृषि विभाग राज्य का अधिकारी है वे अपन खेत रो निरीक्षण करे। खरपतवार मान लो है वह भी देखेला किन तरह खेत में खरपतवार है, कई मान लो कीट रोग लागा है पौधा माते पत्तिया माते फल माते फूल माते वे देख परान बाद में अपने सजेस्ट करेला कि भाई आ फला फला जी की रसायन है दवाई है वह अपने खरीदनी है। और खरीदा आपा उन वक्त आपने देखना है कि भाई दवा अवधि पार तो नहीं है वह तारीख देखनी जरूरी है। और एक बात रो ध्यान रखना है कि आपने बिल जरूर लेनो है और जिकी वासीसी है जिको डिब्बा मैंने ले रिया हाँ वो टूटोड़ो फुटोड़ो नहीं होना चाहिए। और एक बात रो ध्यान रखना कई दान कहीं करे कि भाई अपने किसान भाई हेर दिखिन आवे तो सोचे भाई के कीट रसायन भी लेला और साथ दूजी खवनी पीवनी चीजें भी लेला। तो कोशिश अपन आ रखनी है कि जी की खाद्य सामग्री है जी की अपन घर वास्ते वापरने वास्ते लेना या उन्हारे हाथ वे जी का कृषि रसायन है उन्होंने नहीं रखना उन्हारो आप नेरो थेलो रखनो है और घरे ले जान भी ऊंचो अलमारी में रख ताड़ो लगाना है और खास तौर से अपन ध्यान रखनो है। हमें बात आवे कि भाई जी का कृषि रसायन आप ले रहा हाँ आवश्यकता अनुसार ही आपने खरीदना चाहिए, ज्यादा आपने भंडारण नहीं करना चाहिए। इवन एक भाई हमें हेर दिखे ने भड़कुण जाए एक डब्बा जगह चार डब्बा ले लो दकली साल काम आ जाए वो आपने काम नहीं करना है। जितनी जरूरत है रसायन री उतरो आपने लावना है। कृषि रसायन जी का आप भंडारण करा मान लो जी आप बात करी कि भाई पहला अलमारी में ले जान रख दो ताकि बच्चा री पौष तक नहीं पूग सके बच्चा भी नहीं छू सके। इनके साथ साथ जो अपना पालतू पशु है वाणी पशु भी अपने दूर रखना चाहिए और टूटोड़ा फूटोड़ा डब्बा है उनारो भंडारण भी अपने नहीं करना है। इवनी के वाने आपा धोलान करलान फाचा आपा पीवने पानी वास्ते आपा काम में लेला या कोई मान लो अपनो सामान है उन सामान डालने वास्ते आपा काम करला। चार पैरों लालच नहीं करना है खास तौर से मारो ऐज कहना है वो जी को डब्बो है विन्ने नष्ट करना है बच्चों से दूर रखना है। और गोल बनाने पहला और गोल बनावे किसान भाई उन वक्त किसी किसी बातों ध्यान रखना है। इस्तेमाल पहला दवारो जी को डिब्बो है बोतल है लेबल आपने ध्यान पड़ना है कि भाई अवधि पार वो नहीं होना चाहिए नितर आप वो कोई काम में नहीं आवेला। पूरे शरीर माते आपने कपड़ा पहन रखना है लंबी आस्तीन जीव कमीज है मुंडो ही मान लो आप थोड़ा ढकला करला पगा में भी जूता चप्पल है मोजा

0: अपन पैरन राखना है
1: और
0: जितनी मात्रा सुजयड़ी है कि भाई इतो ना प्लीज अपने दवी लेनी है और उतनी मात्रा में जो है पानी अपने मिलावना है। और एक बात रो ध्यान रखना है कि भाई वो जो को आप घोल बनावा कपड़ा धोनो जो को साबुन वे उनो थोड़ो पाउडर मिला दा ताकि जो को घोल है वो उन पतियार माथे चिपक पर रह सके। घोल बनाते वक्त बोतल है डिब्बा है बहुत सावधानी आपने खोलना चाहिए। इवनिंग आप जल्दबाजी में खोल दा कोई टाबरा कनु भी नहीं खोलावना चाहिए।
1: और
0: ध्यान रखना कि भाई वाजी की दवाई है अपने शरीर माते कटे नहीं गिरे आप रे हाथर महीने मोजा पहन अपने रखना है आंखिया सू अपनी आंगलियां दूर रखनी है। घोल हाथों नहीं मिलावनो है कोई लकड़ी रो जो को डंडो है या कोई लोड़ारी कोई छड़ है उन आपने मिलावनो चाहिए।
1: और
0: घोल बनाते बगत भी ध्यान रखना है और एक बात और ध्यान रखना छिड़काव करा आपा कीट रसायन रो उन बगत भी आपने ध्यान रखना है कि भाई अपने शरीर माते नहीं पड़े। और बाद रे महीने छिड़काव रे बाद रे महीने साबुन साफ अपने हाथ करना है कपड़ा भी फाचा धोना है अपने हिनान भी करना है ए बात विशेष तौर ध्यान रखनी है। और जिकी वे डिब्बा है बोतल है मान लो कृषि रसायन री खाली होगी है तो उन्हें तोड़ दो जमीन में अपा गाड़ दा ताकि किन तरह जिको दूजो जिको उपयोग है वो अपने नहीं लेना है। हम एक बात आवे किसान भैया के भाई आपने छिड़काव करता वक्त आपने कई कई ध्यान रखना है। कृषि रसायन रो छिड़काव करता वक्त ध्यान और रखना है कि भाई आपने डील माते पूरा कपड़ा पहनना है कोट पहन लो कमीज पहन लो रबड़ राजी का दस्ताना है वे आपने हाथा में पहन लो नाक रे माते बढ़िया मास्क लगा लो या मास्क नहीं हुआ तो कपड़ो लगा लो। और एक बात रो ध्यान रखना है शरीर माते अपना कोई खुला घाव है वे नहीं होना चाहिए। घाव वे तो आपने छिड़काव करना जरूरी भी हो जावे मान लो कोई दूजो नहीं भी है आपने खेत में काम करने वाला तो उटे जटे घाव योड़ो है वो बढ़िया मोटी कपड़े री पाटी बांध ला आपा छिड़काव बुरकाव सुबह और अचानक बगत में जिन बगत ठंडक वे उन बगत करना चाहिए। छिड़काव करा आपा बुरकाव करा तो हवारी दिशा में आपा ने करना चाहिए हमारे विपरीत दिशा में मैंने नहीं करना चाहिए कि आप छिड़काव कर रहा रहा हवा अपने हामी जावे कृषि रसायन जी को प्रभाव है अपने श्वास लामिल में आ जावे वो हमेशा ध्यान रखना है। और कृषि रसायन छिड़कता बगत भी टेमो टेम अपन वो ध्यान रखना है कि कई भाषण कहीं करे कि बीड़ियां भी पीने लाग जाए कई हिगरेट भी पिए और कह रहे तो कहीं है कि कोई तंबाकू है गुटको है खावनी लत है मान लो तो इनरो तो सेवन अपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कृषि रसायन रो छिड़काव करता वक्त ए जिकी खावनी पीवनी नशेरी जिकी चीजा है ए भी आपने नहीं लेनी चाहिए। और नोजल ने कदे मुंडे साफ नहीं करना चाहिए कई दान कहीं वे खरपतवार नासी दवा आपा काम में लेवा और पचे जिको स्प्रे रो जिको प्रयोग है वो भी अच्छी तरह आपने करना चाहिए साफ करन ताकि कीटनाशक जिको स्प्रे तो आप काम में लेवा तो आपने सावधानी आपने काम में लेना बहुत जरूरी है। छिड़काव और बुरकाव करते वक्त जिका अपना टाबरिया है बच्चा है या मान लो कोई रिश्तेदार है इंडे साथ साथ पालतू पशु है पक्षी है अने कने नहीं आऊ देवना पशु वे तो बिना अलगो ले जाना अपने बांधो ओला रमाइने पक्षी वे तो बिना थोड़ा उड़ा देना चाहिए के भाई अटेंड जगह आप छिड़काव करा या खेलडी नीचे कर रिया माते कोई बैठा करे तो आप थोड़ा माने उड़ा दा। और पचे जी की आप मशीन काम में लाए उन्हें आप खेत में छोड़ दा या कोई बर्तन है फिर मैंने कीट रसायन रह गयो है कृषि रसायन रह गयो आप खुले छोड़ना आएगा वो आपने काम नहीं करना है बहुत सावधानी रखनी जरूरी है। कृषि रसायन छिड़कता वगत या भुरकता वगत अगर मान लो कोई विषैलो असर व्यक्ति माते पड़ जाए या प्रभाव आवे तो तुरंत आपने प्राथमिक उपचार करना चाहिए और डॉक्टर साहब ने दिखाना चाहिए। अब छिड़काव के बाद आप कहीं करे जिको बचीड़ो घोल है वो अन्य व्यक्ति जिको छिड़काव करनी चाहे विन आपा दे दा नित्र आपा कहीं करा बेकारी जी की जगह वे खेत में उठा आप गड्ढो खोद आपा विने दबा दा एंड सागे सागे छिड़काव और भुरकाव में जिका काम आने वाला जिका यंत्र है बर्तन है साबुन है कपड़ा दोनों जी को पाउडर है मैंने सब ने अपने साफ कर रखना चाहिए। और जिकी दवाई बचगी है कृषि रसायन ने आपने मूल पैकिंग में आप फाचो भंडारित कर परा और टबरियारी पहुंचो आपने दूर रखना चाहिए आपने सुरक्षित अलमारी में रखा ताड़ो लगावा चाबी आपने कने रखा तो ए सावधानियां रखता थका आपने कृषि रसायन रो सुरक्षित उपयोग आप करा तो भात भातरी जिकी जोखिम आवे उनसु आप बचाव कर सका। किसान भैया आ ही जानकारी कृषि रसायन रो सुरक्षित उपयोग कर आप जोखिम बच सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है दिनेश राणे जाने सिख दिराओ राम राम।

आकाशवाणी रिया गूंज आपारे 90 साल री यात्रा पूरी कर रही है 8 जून 2026 ने। 9 दशकारों ओ सफर सिर्फ तरंगिया रो सफर ही नहीं हो, अपने करोड़ा दिला री धड़कन, बदलती संस्कृति और अनगिनत यादा रहो। आप रिजा दुई आवाज और शब्दा में प्योर आपारे सागे दिला तक पहुँचाने रो काम करो अपना प्यारा सम्मान ने उद्घोषकर। और जिका पर्दे रे पीछे रेर किता ही लोगा रा मन है जिका मोलियो, जिका दिखाई तो नहीं दिया पर फिर भी अपने जीवन रा अपने परिवार रा हिस्सों बन गया। तो 90 साल रे सफरी यादा ने ताजा करने वास्ते आज एक विशेष कार्यक्रम लेने आया हाँ आवाजारो झरोको। वो आवाजारो झरोको खोला ला पर थोड़ी देर बाद।

0: सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगणगौर और आज आप आगे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रेडियो जगत की बेहद सम्मानित और सशक्त आवाज कमल शर्मा जी, जिसका वर्षा तक आपकी आत्मीय आवाज और सहज अंदाज सो श्रोता वाले दिला में जगह बना चुका है। तो सर आकाशवाणी जोधपुर इन कार्यक्रम में आप रोगणे मानसो स्वागत है।
1: अरुणा जी आपको नमस्कार, जोधपुर के आकाशवाणी परिवार को मेरा नमस्कार और जितने भी श्रोता हैं आकाशवाणी जोधपुर के उनको भी हृदय से मेरा नमन शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रहे 90 वर्ष जी की गौरवशाली यात्रा जी की है बा पूर्ण हो रही है और आप जो है आकाशवाणी इन यात्रा ने बहुत ही करीब सु देखा भी हो और जिया भी हो, तो इन अवसर पर आप कहीं क्यों चावला।
1: देखिए भारत में रेडियो प्रसारण की इसमें निस्संदेह एक गौरवशाली संस्था है, बल्कि रेडियो प्रसारण की मातृ संस्था है आकाशवाणी। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज जिस मुकाम पर हमारा देश है, विकास की जिस पड़ाव पर है, उसकी साक्षी रही है आकाशवाणी। और चूंकि अगर हम प्राइमरी चैनल की बात करें आकाशवाणी के, तो उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। तो आकाशवाणी ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज तो क्या है कि एक सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास में हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने की नई नई जानकारियां हम तक पहुंचती हैं, लेकिन एक समय था कि जब शहरी अगर हम श्रोताओं को छोड़ दें तो हमारे जो कस्बाई या दूर दराज के हिस्सों में रहने वाले लोग थे, हमारे वनवासी भाई बहन, उन तक जानकारी पहुंचाने का, मनोरंजन का एकमात्र साधन था रेडियो और सहज, सस्ता, सुलभ माध्यम। तो इसके जरिए सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन तक पहुंचाना, जो उनके हित की योजनाएं थी, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूप से जागृत करना, हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां भी रही हैं, उनके प्रति लोगों को आगाह करने के लिए जन जागरण में आकाशवाणी की एक बहुत ही महती भूमिका रही है, अमूल्य योगदान रहा है उसका। और अगर हम भारत में हरित क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें, तो उसमें भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी का सरोकार अपने हर आयु वर्ग के श्रोताओं से बहुत गहरा है, चाहे वो हमारे युवा हों उनके लिए युवाणी कार्यक्रम होता है, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, गृहिणियों के लिए, बच्चों के लिए और हमारे किसान साथियों के लिए, फौजी साथियों के लिए आकाशवाणी ने अहर्निश उनकी सेवा की है, उनको महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध करवाया है अभिव्यक्ति का, और साथ ही साथ देश में सुगम संगीत की, लोक संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, उपशास्त्रीय संगीत की जो प्रतिभाएं हैं, साहित्य जगत की जो प्रतिभाएं हैं।

0: उनको सशक्त मंच प्रदान किया है। तो आकाशवाणी ने, क्योंकि हमारे देश में एक सांस्कृतिक वैविध्य है, कई भाषाएं हैं और कई मत हैं, मतांतर हैं, उनके बीच में ये जो सांस्कृतिक वैविध्य है इसको बनाए रखते हुए आकाशवाणी ने देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोया है और अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को उसने सार्थक किया है। और ये यात्रा निर्बाध रूप से आज भी जारी है। और सबसे एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि शायद पूरे विश्व में आकाशवाणी की जो परिचय धुन है वो शायद अपने आप में सबसे नायाब है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने वर्षों से उसका आकर्षण आज भी खत्म नहीं हुआ इतने वर्षों में, और आज भी लगातार वो प्रगति के सोपान तय कर रही है। और वक्त के साथ आकाशवाणी ने अपने आप को बदला है, नई तकनीक को अपनाया है और सतत श्रोताओं की सेवा में आज भी वो समर्पित है।
1: बिल्कुल सर, आपका जी का विचार है बहुत ही सुंदर विचार है। सर आप आकाशवाणी बहुत एक लंबे समय तक जुड़ा रहा हो, तो कोई इस अनुभव या कोई किस्सा है जो आज भी आपने याद है?
0: ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, और जैसा कि आपको मालूम होगा आकाशवाणी में बहुत समय तक मैं रायपुर के केंद्र पर कार्यरत था। उसके बाद में 1992 में विविध भारती आ गया, तो विविध भारती में मैंने भारत का पहला जो इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम था उसको डिजाइन किया था, उसका नाम था हेलो फरमाइश। और वो एक मेरा बड़ा ही यादगार अनुभव था, क्योंकि पूरे देश से बल्कि देश के बाहर से लोग श्रोता जो थे उस कार्यक्रम के लिए फोन करते थे, उनसे एक व्यक्तिगत, जैसे कहते हैं ना, आत्मीय संबंध स्थापित होता है। आप देश के अलग अलग भागों से लोगों से जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों से परिचित होते हैं। आपको पता चलता है कि हम कितने समृद्ध हैं सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, हर लिहाज से। तो एक तो वो मेरा बड़ा अनुभव बहुत प्यारा रहा उसमें। इसके अलावा जो दूसरा, एक आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हमने एक कार्यक्रम डिजाइन किया था, उसका नाम था हेलो कारगिल। और जब तक कारगिल का युद्ध चला तो हम अपने सैनिक भाइयों को उनके लिए कार्यक्रम करते थे, और पूरे देश को हमने उनसे जोड़ दिया था, उनकी हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम होता था। और उस कार्यक्रम को करते हुए मुझको याद है कि जयपुर से कोई फोन कॉल आई थी, और उसमें हमारे बहुत सारे जो घायल सैनिक थे उन्होंने फोन किया था, और उनका जज्बा इतना ऊंचा था कि फोन रखने के बाद मैंने उनसे पूछा कि इसके बाद बातचीत जब खत्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे। बोले साहब, जैसे ही हम ठीक होंगे हम फिर से लड़ना जाएंगे, और आपका ये जो कार्यक्रम है ये हमें बहुत हौसला देता है, और ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है। तो उस चीज ने बहुत छुआ, क्योंकि हमेशा मुझे लगा कि हमारे देश के असली जो नायक हैं, असली हीरो हैं, वो हमारे फौजी भाई हैं। तो उनकी सेवा करते हुए मुझे लगा कि मेरी नौकरी सार्थक हो गई। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर उस कार्यक्रम के स्थान पर हमने एक और कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम था हेलो, उसका नाम था जयमाला संदेश। उसमें फौजी साथियों के परिवार के लोग हमें चिट्ठियां लिखते थे, उन चिट्ठियों को मैं पढ़ता था। रविवार को वो कार्यक्रम आता था, और उस कार्यक्रम में चिट्ठियां पढ़ते हुए हर बार मेरा गला जो है रुंध जाया करता था, ऐसी मार्मिक हृदय स्पर्शी चिट्ठियां होती थी। तो प्रसारण में तो आप बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम आपकी स्मृतियों में हमेशा के लिए रच बस जाते हैं, और आपको लगता है कि आपने अपने जीवन को सार्थक किया ऐसे लोगों की सेवा करते हुए। और एक प्रसंग जो हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ, और ये घटना मैंने कई जगह सुनाई भी है, कि मुझे याद है हमारे एक मित्र हैं अशोक सोनावणे, जो दिवंगत हो गए हैं, नहीं हैं, वो उस समय एक कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे, और किसी महिला श्रोता ने उनको फोन किया कि मैं कमल जी से बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बात की, वो एक त्रिवेणी कार्यक्रम उन्होंने सुना था जिसमें मैंने जीवन के संघर्ष की बात की थी, और कहा था कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों जीवन से संघर्ष करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी, जीवन से निराश हो चुकी थी, लेकिन आपका ये कार्यक्रम सुनने के बाद में मैंने मरने का इरादा त्याग दिया, और मुझे लगा कि मैं जीवन से संघर्ष करूंगी, और उस एक कार्यक्रम ने मेरे जीवन की दिशा और दशा

0: बदल दिया। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा इनाम है एक ब्रॉडकास्टर के लिए कि आपका कोई कार्यक्रम किसी के जीवन को बदल दे।
1: बिल्कुल सर, आपका अनुभव और प्रेरणा की यात्रा है और सुनने में समझ में बेहद ही विशेष रही हो, और इन अवसर पर आकाशवाणी की पूरी टीम जी की है आप रो बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है कि आपसे बातचीत करी और इतनी सुंदर बातचीत सुन पड़ा, मांडोगा ने भी बहुत सारी प्रेरणा मिली, आप रो बहुत बहुत आभार।
0: मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी जोधपुर को, आपको और हमारे वो साथी जो आकाशवाणी में कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको, और जो हमारा विराट श्रोता परिवार है जो हमारी असली ताकत है, जिन्होंने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया और उनका मनोरंजन करते हुए मैंने एक ब्रॉडकास्टर के रूप में इतनी लंबी यात्रा की तय की, उनको भी हृदय से मेरा नमन और अनंत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद,
0: शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर। आकाशवाणी जोधपुरी इन विशेष प्रस्तुति में आज अपारे सागे फोन लाइन पर जुड़ गया है एक अनुभवी वरिष्ठ उद्घोषक, जिका जद रेडियो पर राम राम कहता तो राम राम बोलने बनो अंदाज इतो निराड़ो हूँ तो कि श्रोता जिका है वे खुद ही समझ जानता कि आज कार्यक्रम में कौन आया है।
1: राम राम शाह नमस्कार सब हुनवल में बोल दीरा गणेमान राम राम नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में आप घने मान से स्वागत है और श्रोता जी का है आप रोज को राम राम करण रोज को अंदाज है विश्व ही लोग जी का है आपने पहचान गया है कि आज कौन है। आज बिल्कुल अपारे सागर है गोविंद त्रिवेदी जी सर। तो सर आप रोज को अंदाज जी को हो भोल जी रोज को किरदार जी को हो वो बड़ा ही अनोखो हो।
1: हाँ आराधना जी देखो साके जतन जाप तक करिया एड़ा और दूसरा मार तो कहीं है साके देखो बूढ़िया री सीख अग्नि त्योड़ी कि भाई कोई काम करो तो आप एकदम मन नु काम करना तो मन नु लगान काम करियो मेहनत करना करियो और एक मैं ही नहीं सा दुनिया में कोई वो भले मेहनत करना जे कोई काम करे तो उन्होंने फल मिले ही बढ़िया इनमान कोई दो राय नहीं कोई सक्षम सब वो नहीं।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल सर आप जी की सीख है आप बहुत ही सुंदर सीख है सर। रेडियो पर आप आवाज जी की है साला तक गूंजती रही
1: सही बात है भगवान कह के नहीं मौको दियो एडो आराधना जी सही बात कहूँ थाने वो कोई भाग्यशाली है कि नहीं उन्हें कह तकदीर लिखेड़ रहे कि भाई इतना श्रोता और स्नेह प्रेम मिले आपने मेयर पीछे बैठे बात मतलब करो और सुबह बड़ो एक इनमान जी को है कि नहीं मजो है कि आप जिन टाइम रेडियर मन प्रोग्राम करो के तो कई भाषण जी का है भाई यूं आप आपने यूं ऊपर समझे तो ऊपर नहीं समझने अपन तो कह के नहीं श्रोता और भेड़ा बैठे कोई बात करता है कि नहीं वो भाव मन में लान के भाई अपन हम बैठा है श्रोता अगर वहाँ होता ही करनी है वहाँ बात मंत्र करनी है तो वो भाव लान बात करो तो आग लगी घोड़े के उन्हें लगे हाँ भाई तुम्हारे पीछे ले गया वो कोई ना कोई।

0: मिला के।
1: तो सर तो आज आप श्रोताओं से फिर तू जुड़ रही हो, आज आपने किया लाग रही हो।
0: ओ राधना जी मत पूछो लागे कोई जने के राम जी मिलिया है मन तो श्रोताओं जी से बात करो के लागे भाई अपन जी तभी प्रेमी आदमी हूँ बात मंत्र करो तो आप फोन में पता पो गए फोन बुदे तो एडी कैमरा मन विकास करने जी का पैसा होने की नहीं वो नहीं बाढ़ जो होता हमारा प्रोग्राम दिन टाइम हो तो देना बाढ़ जो होता हमें आज रिटायर्ड हूँ मैं बाढ़ जो कि भाई पैसा कोई होने में नहीं तो मैं सरकार रिटायर कर दिया कर दिया कोनो ने बनियोड़ो भाई 8 बरस के ऊपर होते ही आपको रिटायरमेंट घर पे जाना है तो हम आ गया बैठ गया अपन मन में तो रही गया साहब आठी उम्र कट मजदूरी करी आकाशवाणी में हमने घर बैठा हूँ तो एक खेमो को दिया होगा नहीं हो बढ़िया मन बहुत जोरदार लग रहा है आज भाई बिन मिल बैठ बात मतलब करने मौको

0: पता लग रहा है आज गायों बिन मिल गया कि बात मतलब करे नमो को मिलियो है तो मन तो लगे राम जी मिलिया सही बात
1: बिल्कुल सर। तो डिकेडम सर आप काम करता बिन समय एक रेडियो हुई करतो और आज रोज को आधुनिक डिजिटल रेडियो है तभी में आपने कई बड़ा जो को बदलाव जो को आप देखने मिले आपने
0: यूं है आराधना जी देखो के रेडियो पहली जिन टाइम होता के जन तो मैं कहूँ नहीं के टेपो थरदे की वीडियो हुई सारी टेपो मोटी मोटी आती है एक अटी नो चलती नो टीन खत्म होती हूँ तो वो डेकाली मशीन कहता के उन्हें बिन माते काम होता जब उन्नी जी की रिकॉर्डिंग होती है वह एकदम क्वालिटी एकदम जबरदस्त होती जिसका नाम इतनी बढ़िया कहनी आवाज डिजाइन रंग रोगन उन्मान जोरदार होता हमें आजकल यूं थे कहो कि भाई आधुनिक कर जरा कई रेडिया खुल गया है कर गया है हमें तो मुंबई रिमान नहीं आप रेडिया हिंदुस्तान आ कर हूं सको कोई स्टेशन लोन मोटो हो तो एक आप आज देख लो कि जैसे आपने क्वालिटी चीज है बढ़िया एकदम वह चीज आपने थोड़ी मिला लान जैसे आपने घनी चीजें मिल जाएगी उस क्वालिटी में फर्क पड़ जाए तो अब डिजिटल जी का है डिजिटल रिमान आप ठीक है मन पसंद आप चाहे जी को हूं लो कर लो वह बात अलग है उन टाइम जी की रिकॉर्डिंग होती है उन टाइम जी का मेहनत कर प्रोग्राम तैयार करता है मशीन माते भाग दौड़ रहती जबरदस्त स्टूडियो में अड़ा जमा जम रौनक रहती बस मत पूछो
1: तो सर आपने बहुत समय लाग तो वाला कार्यक्रम तैयार करना
0: हाँ टाइम घनो लाग तो साउंड टाइम तो जियो कोई अब नाटक मैं तो कई कह नहीं आप जियो लोक लहरी प्रोग्राम हो तो जितरियन ले ना तो घना पसंद करिए लोग ला तो मैं संजय ब्यास जी अपने प्रश्नोत्तरी हरू करी मैं राजस्थानी में प्रश्न पूछता हिंदी में पूछता तो लोग घना पसंद करी ए फिल्म आवे कि नहीं अपने फरवर में देखो जी की सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल री फिल्म होवे तीन घंटे री
1: बिल्कुल
0: मैं भी ने मेहनत कर करान 15 मिनट में सार निकालना बयान होना होता रेडियो में 15 मिनट में पूरी फिल्म आप पिक्चर एकदम होनी चाहती तो मेहनत करता साउंड टाइम आता है मैं तो अब देखो सर मारवी का पुराना हक नहीं सीनियर एलाउंसर वो ही ने बाकी तो मारे कट है बैकग्राउंड रहे कह के नहीं अंग्रेजी में कह नहीं बैकग्राउंड हेड हो मारो कोई वो खास हो नहीं कला जरूरी स्टेज नाटक दूजा करिया सब करिया पण ही क्या तो मारे जी का सीनियर अलाउंसर हा बटा अधिकारी जी का अधिकारिया ने मानी गुण घना आएगी अब मारो एक छोटा सा उदाहरण दू एक प्रोग्राम बारू रिकॉर्डिंग करने लेने आया तो मशीन लेन जाता है रिकॉर्डिंग री वहा कोई सेल बैटरी खत्म हो गई कहीं टका हो जी वो ढीली पड़ गई आवाज एकदम यो बिगड़ गई रिकॉर्डिंग करने लाया आप उठे तो हूं नहीं सकिया बट आने कंप्यूटर में घाल ने चेक करिया तो एलो आवाज थी नहीं तो हमें इन करो सुधारो अपन आवे नहीं
1: सही बात
0: वो पैसा लियोड़ प्रोग्राम पैसा दे रिकॉर्डिंग करने गया तो जिन पैसा लियोड़ा है अपने तो काम तो करन देवना पड़ी तो मैं क्यों पता हाथ ऊंचा कर गया काम चल रही है मैं तो अधिकारी जी का नहीं वह सब बैठ बैठा कंप्यूटर में घाल की कर और करना भयंकर माता पड़ी 15 मिनट प्रोग्राम हो उनमें दो दिन लाग गया रह रहे मैंने आवाज ने सेट करनी है बहुत माता पड़ी काम है तो पहली मेहनत खूब होती सा मेहनत तो करता क्या जनी श्रोता पसंद करता है श्रोता और स्नेह प्रेम अपार मिलियो इनमें कोई दो राय नहीं
1: बिल्कुल सजद आप काम करता है भोल जी रो के वे नहीं नाम जो है खूब सुनिया करता लोग बड़े चाव सो जिया की अब आप राम राम की और भोल जी की हो तो लोगों ने पता चल गयो कि अच्छा गोविंद सर है जी का आया है तो आपने उसको नाम मिलियो वो किन प्रकार मिलियो इन रूम अब भोल जी नाम क्यों मिलियो आपने
0: ये कहानी है जोरदार पहली कही है अपना आकाशवाणी मन ने उमुक भोम जी तो प्रोग्राम करता कही है समय रात कहते खत्म हो गया प्रोग्राम भोम जी जिन टाइम नहीं रहा प्रोग्राम एकदम होनियाड हो गया तो अपने आकाशवाणी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार राम साहब बहुत गुणी और बहुत विद्वान आदमी सा और मैं कहूँ के मैं हिंदी रा प्रोग्राम करता हूँ हम तुम वाला और हिंदी प्रोग्राम में वह कह के तो बढ़िया फैसली को करी है इन मारवाड़ी गालम देखो तो मैंने एक दिन बुलाया उनके कहा आपको हिंदी का प्रोग्राम छोड़ के राजस्थानी का करना है मैं कहा भी मन मत फंसा हुआ राजस्थानी प्रोग्राम में चौपाल राम राम जी का मौनी है हिंदी प्रोग्राम में बढ़िया कर दू आपको तो गुणी आदमी है मारे कहे तू एक महीनो कर ले और जे अगर तन पसंद नहीं आवे महीनों पर तो मन कह दीजिए पाछो मैं तन पाछ थारे हिंदी में हम तुम करण गाना बजी जाए मौज कर दे तो मैं कहो मैं बड़ा आदमी है मैं साहब है कह दियो है तो मैं कहीं करा मन मार राजस्थानी में घुसियो राजस्थान।

0: ने प्रोग्राम राम राम शाह नमस्कार आप सब ने बहुत जी रहा थे मोहन राम राम ओ करियो चार पांच दिन हफ्ते पर हुए वाला उन टाइम तो फोन ही आता है चिट्ठियां ही आती हैं पर कह के भरमार चिट्ठियां आने लगी खूब फोन आने लगा बहुत जी कौन है भाई ये बहुत जी कौन है एक हफ्ते मान नहीं मन रिजल्ट था पड़ गया भाई लोगों और स्नेह प्रेम बहुत जी ने खूब मिल गया महीने पर खोच लिया मैं महीने पर पे अनिल राम साहब मन बुलाया कि भाई सारे ऐसो पद लगा तो हिंदी में तारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं मैं क्या चलन दो साहब हमारा बढ़िया काम है ठीक है चलन दो तो अनिल राम साहब जी कहे भाई मैंने जिन टाइम कहा नहीं कि भाई तन बहुत जी काम करना है राजस्थानी में करना है तो वह एक बात कही कि थारो रोल है कि एकदम अनपढ़ छोट गंवार आदमी है बिल्कुल पढ़े लिखने नहीं स्कूल लारवाड़ वो निकल गयो व्यवहारिक ज्ञान जो गांव रमान कही देना है नहीं आराधना जी बढ़िया बढ़िया नहीं हुए पर गुणी हुए बहुत
1: गुणी हुए सही
0: तो थारमान तो गुणी नहीं है और भी करेक्टर है नहीं जी को वो गुणी भी नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है बस वो रोल करना है थाने फिर मैं कहो मारे वास्ते एक बहुत बड़ो चैलेंज क्या संगीत चैलेंज हो मैं मारे तरफ अच्छी करूँ खूब मेहनत कर करा निभाया सा मन तो मारवाड़ी राजस्थानी बोलना कहीं के, नहीं बोले तो हूँ कर बात तुझे करना होता है यार तेन शब्द पकड़ तो मैं ओ गाँव वाला यूं बोले ओ गाँव वाला यूं बोले किताब कहाँ पे वह किपात के तो वह शब्द नियर तेन उठा उठा उठा उठा मार को चरित्र मन गालिया और प्रोग्राम करियो और वो बोल जीरो जिन टाइम किरदार एकदम सोता और बहुत स्नेह मिलियो बहुत प्यार तो हमारे राम साहब भी बहुत यूँ राजी हुए अनिल राम साहब और वह रिसर्च करी इन मत पीएचडी करी स्टॉक करेक्टर एंड मास मीडिया की पुस्तक लिखी हुई है तो वह इन करेक्टर ने देखने को करेक्टर जी को इन ढंगो हिट हो तो इन माते पूरा हिंदुस्तान ने जीता बढ़िया बढ़िया करेक्टर करता है नहीं स्टॉक करेक्टर कह दी ने मियन माते रिसर्च कर ने पीएचडी करी डॉक्टर बनिया पुस्तक लिखन दिल्ली रवान आज भी वह चले अपने कोर्स में है वतन है
1: तो सर चलता चलता एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आकाशवाणी का शानदार 90 साल जिका है पूरा हो रहा है तो इन विशेष अवसर पर आप कहीं कहना
0: चाहोगे पूंजी है आकाशवाणी रोला नहीं रोला मैं रहूंगा नहीं रहूंगा रेडियो करेला तो रेडियो बालपण हाल 90 बरस होया क्या होने वाला है नी तो बालपण है बालपण अरमान इतना रंग रोगन करिया है पूरी दुनिया अरमान आज हिंदुस्तान अरमान आखिर दुनिया अरमान रेडियो री के बड़ू है कटी जाए करे तो रेडियो हूं मान आप समाचार हूं ले मैं समाचार ही आ जाए संगीत ही आ जाए शिक्षा ही आ जाए सब बातों और ज्ञान जिन्हें जड़ो सही से नहीं बैठो इन मन मिल जाए तो रेडियो तो खूब प्रगति करेला हाल तो बालपणा में है बस आज मोटियारपणा में और दिन दुनी रात चौगनी प्रगति कर रही इनकी की तरह प्रोग्राम आई तो ताऊ जोड़ी
1: तो सर अपने बातचीत तो काफी हो चुकी है पर एक सवाल और आप पूछना चाहूँ कि जिसको कार्यक्रम आप प्रस्तुत करा कोई भी कार्यक्रम तो कौन कौन सी खास बातें जिकी है ध्यान में रखनी चाहिए
0: हाँ बात बहुत बढ़िया पूछी हो आराधना जी कहीं है कि देखो भाग दौड़ करता आवे ने आप कर रहा काम बाला काम मिवेड़ ने आवे सीधा रेडियर मत बैठ ने प्रोग्राम करना बहुत जा तो दिन प्रोग्राम ने क्वालिटी है कि नहीं वहां पे बैठ जी रहे और दूसरा है मोटो देखो ब्रह्मास्त्र बताऊं मैं आपने तो भाई रेडियर मन देखो कि ज्ञान तो सब जगह मिल जाए आपने कटी जाओ बूटियर कन बैठो लो तो ज्ञान के देख बेटा डावे हाथ का निचाल लो अपने झूठ नहीं बोलना हाथ बोलना ज्ञान री बात तो आपने जगह जगह मिल जाए पर रेडियर मन ने अगर जे मान ला आपने प्रोग्राम देव ना मौका मिले हो क्या तो फिर मैं ज्ञान री बात करो जी की अच्छी बात है पर हाथ कोई हंसी मजाक री बात है नहीं जिन्हों थोड़ो सोता और उत्साह वर्धन हो तो हमारे प्रोग्राम में वही हो सर अगर हंसी मजाक भी हो जाए और आपने ज्ञान भी मिल जाए तो ही बातों में जाएगा प्रोग्राम रमान ने आपने लपेटना चाहिए समेटना चाहिए तो जिका भी प्रस्तुत करता है कि नहीं ज्ञान भी लगे नहीं ज्ञान तो आपने मिली जैसे सब जगह मिले सही बात है कि नहीं यार
1: बिल्कुल सही बात है सर आज देखो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिकी बताई हो और इतने व्यस्त समय में आप अपन बहुमूल्य समय जिको है निकाले हो आकाशवाणी जोधपुर जिको सुहानो सफर हो पुराणों बिना आप फिर तो एक बार याद है वाणी सबरी ताजा कर दी तो इनके लिए आकाशवाणी पूरे परिवार जिको है आप बहुत बहुत धन्यवाद है जिको कह रही है
0: आप बहुत बहुत धन्यवाद है सर आराधना जी आज मौको दियो मन मार राम जी मिलन सब भाई सहन जी का होने की नहीं पास बात मंत्र करूँ तुम्हारे ही मन मान नहीं हो रहा हो क्योंकि मैं रिटायर हुआ खास टाइम हो गया बात मतलब करने मौको नहीं मिले थे मौको दियो आकाशवाणी परिवार जी का अधिकारी है कर्मचारी है सब मौको दियो मन अंतर मन मार धन्यवाद नमस्कार करो राम राम।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगणगौर, और अब बात कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से रेडियो जगत री एक ईसा व्यक्तित्व से कुछ नई शुरुआत भी करी और लाइव कंसोल संभालते हुए बहुत कुछ नया बदलाव भी कर और सागे ही सागे श्रोताओं और दिला में एक अमिट पहचान जिकी है वह भी बनाई। तो आज आप सागे है वरिष्ठ अनाउंसर लक्ष्मण साधु जी। तो आकाशवाणी जोधपुर गणगौर में आप रोहित हरक सो गणे मानसू स्वागत है सर।
1: सबों पहली तो मैं हमारा हितालु श्रोताओं ने राम राम कहनी चाहूँ। एक लंबे अरसे पचे श्रोताओं मुखाति बोरी हूँ, बातचीत कर रही हूँ, मने बहुत ही अच्छा लाग रही है।
0: सर हर शुरुआत जी के बाद छोटा छोटा कदमा सोया करें और आप री आवाज जी की सालों तक लोग जी का है रेडियो जगत में सुना ही। तो सबसे पहले आप बताओ कि आप रो जी को पहलो रेडियो से जुड़ाव जी को वो कद हुई हो और किया हुई हो।
1: 1981 की बात है जब मैं जोधपुर स्थानीय अखबार में काम करता हूँ एज ए पत्रकार। बिन टाइम मैंने ठा पड़ी कि आकाशवाणी जोधपुर में कैजुअल भी कुछ जरूरत है, तो मैं वटे आवेदन करियो और युवाणी में मारो सिलेक्शन हुए एज ए कम्पेटर रूप में। तो करीबन मैं 3 साल तक युवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत करियो। इन दौरान मारी बीए कंप्लीट होगी, उन टाइम 12वीं पास ने ले लिया था। पचे आप बीए कंपल्सरी कर दी तो पचे मारो कैजुअल अनाउंसर में वे लोग अटेंडेंट ट्रांसफर कर दी। उन्होंने लेने 7-8 साल तक मैं एज ए कैजुअल अनाउंसर आकाशवाणी जोधपुर में सेवाएं दी। और उन्हें पचे था पड़ियो के आकाशवाणी सूरतगढ़ में एक वैकेंसी निकली है अनाउंसरी, तो मैं बिने वास्ते आवेदन करियो और ईश्वरी कृपाओं वटे मारो सिलेक्शन हुयो। और मारो पहले स्टेशन स्थायी उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी सूरतगढ़ है वटे वे 3 जुलाई 1990 में कार्यभार ग्रहण करियो और वटे मैं करीबन 2-2.25 साल रहियो। बिने पचे मारी ट्रांसफर होगी आकाशवाणी बाड़मेर नयो नयो खुलियो मारे वटे ट्रांसफर होगी, मैं वटे भी करीबन 1.25 साल रहियो और उन्हें पचे 27 साल करीब जोधपुर आकाशवाणी में निकालिया। मैं स्थायी जो नौकरी ही मारी 30 साल और करीबन 27 दिन में आकाशवाणी ने मारी सेवा दी। और जब तक मैं रहो मैं बड़ी ईमानदारी काम करियो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे नमस्कार हो, FM हो, चाहे युवाणी हो, चाहे नारी वाटिका हो, गणगौर हो, चुनमुन हो, या जो भी प्रोग्राम मारी ड्यूटी रमाइन आता है, तो मैं उन्हें पूरी मतलब शिद्दत रे साथ उन प्रोग्राम में मारो जुड़ाव रखता। मैं मारी पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम ने कितो अच्छा आपा बना सका उन हिसाब प्रस्तुत करता।
0: जिको उद्घोषक है बीरी भी बहुत ज्यादा भूमिका रिया करे प्रस्तुति में।
1: उद्घोषक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है के कॉम्पियर कई बात कर रही है और वो किन ट्रैक में चल रही है उन हिसाब चेंज और म्यूजिक लेवनो या कोई गाणो सेलेक्ट करने हाथों हाथ वटे बजावनो तो अनाउंसर मार डिपेंड करे। मने याद आवे के शायद एक कहानी शायद आप दी जी जिन्हें मैं लाइव प्रेजेंट करवाई आपको नो और आप उन्हें प्रस्तुत करी मेरे साथ आप रे कंसोल माते हो, तो मैं नहीं कहूँ कि मैं बहुत अच्छो करियो लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जो भी करियो उन कहानी वास्ते न्याय संगत हो।
0: बिल्कुल सर, आप जब किया तो आप सागर जी का अनुभव रिया वो बहुत बेहतरीन अनुभव रिया कि

0: पानी रे अंदर जिका जिका शब्द आया, बिच शब्द
1: हाँ
0: सु जोड़ते हुए आप बहुत सुंदर सुंदर गीत जिका है वह प्रस्तुत
1: हाँ
0: करे। हाँ कि मने उल्ले सोचने जगह ही होने मिली कि मन अब आगे कहीं क्यों है, और जट है मारो वाक्य समाप्त हो तो बिंदे सागे
1: हाँ
0: सागे बिसु ही जुड़ोड़ा आप जिका गीत है वह उन दिन सुनाया है। तो वह
1: हाँ
0: बहुत सुंदर याद है। तो जिया रेडियो रे जब माइक आपने सामने आवे और वो भी
1: हाँ
0: पहली बार, तो धड़कने हैं जिकी है बहुत तेज हो जाया करे और एक
1: हाँ
0: अजीब सो रोमांच है जिको पैदा हुआ है। तो आप इस
1: हाँ
0: उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी में बहुत सारी आपने सेवाएं दी है, तो
1: हाँ
0: मेरा कोई अनुभव जी का है वह आप बताओ।
1: देखो सर के मैं चूंकि पहली कैजुअल अनाउंसर हो तो उन टाइम शुरुआत में धड़कन बड़ी तेज होती, जब मैं कैजुअल काम करता था तो धड़कन बड़ी तेज रहती ने कई बोलना हो तो उन कई बार जो याद करियोड़ो वो भूल जाता और बहुत गफलत रहती। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ता रहे तो कॉन्फिडेंस मन में जागियो कि आप हाँ चीज कर सका।
0: तो सर जी अठेरा जोधपुरा जी का श्रोता है व्यारे सगे आप बहुत ही गहरो रिश्तो रही है, कोई इसो किस्सो बताओ आप कि जब आप काम कर रही हा कंसोल पर या कोई कार्यक्रम रे अंदर, तो वह बहुत ही कुछ अनोखो काम हुयो है वह जी की चीज है वह आज भी आपने याद है पर्दे रे पीछे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुआ करे, कोई इसी याद है आपने।
1: यूं तो बहुत सारा किस्सा हुआ लेकिन जब तक मारो सवाल है कि अगर कोई श्रोता मैंने चलते प्रोग्राम में अगर कोई फोन आओ तो अपना स्टूडियो रोमाइया और कहो तो लक्ष्मण जी और गानों सुनना है अगर आप सुना सको तो मेहरबानी पहला। मैं कोशिश करता हूँ कि उन गाना ने किन्हीं रूप में कटे ही कोई बातचीत बीच में अगर फंस सके तो फंसा देते उन गाना में। तो श्रोता मारू बहुत राजी है कि मैं कभी माड़ा निराश को नहीं करियो।
0: सर कहे नहीं कि इतिहास बनते तो सगला ही देखे, पर कोई इतिहास ने गढ़ है वह बहुत गौरव की बात है। तो जोधपुर में FM सन सिटी की शुरुआत हुई, वो एक नयो दौर हो, तो FM सन सिटी को लाइव प्रोग्राम हो पहलो कार्यक्रम जी को, तो विन दिन कंसोल पर आपकी ड्यूटी लगी, तो उन ऐतिहासिक दिन रा जिसका अनुभव है वह मानसा के शेयर करो।
1: देखियो कि मैं नमस्कार प्रोग्राम उनसे प्रेजेंट करता हूँ जरे स्टाफ वाले ने सबने लागत हो कि लक्ष्मण जी के मुकाबले में कोई कंसोल हमारे को नहीं। तो और जुम्मो मैंने दियो कि FM सन सिटी तो काम भी आप ही देखो लो और पहली जरे FM शुरू हो बिन दिन पहली ड्यूटी मारी लगाई और उन दिन मारा भी हाथ पग फूल गया। मैं क्या FM है कहीं भला तो पहली बार उन्हें प्रेजेंट करियो और सब अधिकारी वगैरह उन्हें स्टेशन डायरेक्टर भी होता असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता पैक्स भी होता तो करीबन करीबन स्टूडियो में 5-7 लोग जमावड़ो लागोड़ो हो और सब मारे नारे खड़ा हो और मैं काम कर रही हो। अच्छा वो टाइम एडो हो कि उन टाइम सीडिया जब शुरू हुई थी उन टाइम पहली LP रो दौर चलतो मतलब जो डिस्क होती वह मशीन माते लाते टर्न टेबल माते और उनमें पिन माते उन्हें बजाओ था। तो
0: बिल्कुल
1: उन टाइम धीरे धीरे खत्म होते रहे पचे सीडिया रो दौर शुरू हुए तो सीडिया रे बीच में गाना रा पीस निकालना या म्यूजिक रा पीस निकालना वो एक बड़ो चैलेंज रो काम हो। लेकिन वो उन चैलेंज ने भी मैं स्वीकार करियो और जैसे पहले दिन वो काम करियो तो सब लोगों ने बहुत अच्छा लगा उन दिन स्टूडियो में मिठाई भी आई मिठाई भी खाई और पचे एक तय हो गयो के लक्ष्मण जी ही FM करेला। तो पचे मैंने अनाउंसर ड्यूटी फ्री कर प्रो और मैंने FM के वास्ते लगा दिया जरे मैंने सुबह 8-8:30 बजे ऑफिस जानू पड़तो और 12 बजे तक कंटिन्यू FM करतो और बिना पचे मैं दूसरे दिन की तैयारी करने पचे घर आवतो।
0: बहुत क्या नहीं, बहुत सुंदर सुंदर आप बातें हैं जी के बता रहे हो। तो सर जी के टाइम आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुआ है, तो एक क्यों नहीं तलवार ही धार पर चलन जी सोया करे, तो आप बहुत सारा काम है जिसको कर चुके हो कंसोल पर लाइव में, तो नई पीढ़ी राज्य का लोग है या जिसका अबार काम कर रहे हैं बाने आप कहीं कहना चाहोला कि कहीं कहीं सावधानियां रखनी चाहिए।
1: देखो एक अनाउंसर होने नाते तो मैं सबूं पहली बात आ कहूंगा कि समय आकाशवाणी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर समाचार और टाइम हो रहा है और समाचार आप नहीं ले पा रहे हो उद्घोषणा आप कंटिन्यू कर रहे हो और समाचार माते आ जावे तो वो एक अनाउंसर फेलियर अनाउंसर है। मैं अब कई बार देखू मैं रेडियो सुनू उन टाइम के जरे कोई स्पोकन वर्ड चल रही है यानी कि कोई किन्हों इंटरव्यू ले रही है ਉਹਨੇ ਕਾਟ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਵੇ ਆ ਮੈਨੇ ਥੋੜੀ ਅਖਰੇ ਬਾਤ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡ ਦੇ ਬੀਚ ਮੈਂ

0: आर्ट पर और विज्ञापन देवण समझदारी नहीं है। समझदारी यह है कि आप कोई गाँव चले उन बीच में उन्हें जरे म्यूजिक आवे म्यूजिक में कार्ड पर विज्ञापन दे सको आप।
1: बिल्कुल सर। तो कोई और कोई रोचक किस्सो हो कभी इनके अलावा?
0: हाँ रोचक किस्सो तो हो उन टाइम मुकुल गोस्वामी जी ये प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही है एफएम रो, तो एक गाना चलता हो फोन इन प्रोग्राम हाथे चलते हो तो श्रोताओं बात चलती तो एक मैंने गाना तो पीस ली एक लाइन मिल गई। जैसे ही गानों में फेड आउट करियो और वो मैं फेड इन करियो वो हेलो हेलो तो मुकुल जी ने वो लागियो कि किसी श्रोता रो फोन आयो जब जबकि वो गाना रो पीस हो और वे खूब उन टाइम हसिया भी और बहुत खुश भी होया कि यार ये तू लाया कहाँ से। मैं कि फिर उसमें आगे के बोले फोन किया है तो बात करो फोन किया है तो बात करो ये गाना ने बोला है तो बहुत ही सुंदर लागो मुकुल जी ने भी बहुत अच्छा लागो भी हमारे आन घर में लिया कि यार मजे करती है लक्ष्मण यार तुमने
1: तो आकाशवाणी का। देखो सर शानदार 90 साल है जिसका पूरा हो रही है तो आप इन अवसर पर कहीं कहना चाहोगा?
0: देखो 90 साल जो पूरा हो रहा है इन वास्ते तो सबू पहले श्रोताओं ने शुभकामना के वो श्रोता लोग रेडियो रो पूरा साथ दियो उन्हें सुनियो उन्हें आपने जीवन में उतारियो और उन्हें कुछ शिक्षा भी ग्रहण करी तो वे श्रोता अगर साथ नहीं देवे तो रेडियो रो और सफर शायद अधूरा रहे। 90 साल जो पूरा हो रहा है उन वास्ते मैं पूरे आकाशवाणी परिवार ने भी शुभकामना दियूं और श्रोताओं ने भी शुभकामना दी।
1: बिल्कुल सर। आज आपसे बात कर रेडियो रो के वन एक पूरे सुनहरो इतिहास है जिकने फिर से जान लियो और आपकी बात और आपका सुझाव बेहतरीन काम करने में सहयोग देवेला इन्हें लिए आकाशवाणी जोधपुर पूरे परिवार की ओर से आप बहुत बहुत धन्यवाद है सर।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर विशेष प्रस्तुति और अभी अपने सके फोन लाइन द्वारा जुड़ चुके हैं। तो सर आप रो घने मानसू कार्यक्रम गणगौर रहमाए स्वागत है।
1: हाँ राम राम आराधना जी।
0: सर आपकी आवाज हूँ लोग पहचान गया है कि आज तो धन जी है यानी कि धना राम चौधरी जी सर आज अपने सागर है। सुनेरा 90 साल जी का है पूरा हो रहा है तो इन ऐतिहासिक मोड़ पर जुड़ रहा होता आज आपने क्या लागे।
1: देखो आराधना जी आकाशवाणी एक एडो माध्यम है जिको की जनता रे ठेठ जो है घर घर तक पहुंचने वालो माध्यम है। 1981 में आकाशवाणी जोधपुर जुड़ियो हो और शुरू में तो वैसे युवाणी कार्यक्रम रे माध्यम से भी मैं कार्यक्रम देवता और उन बाद मायने 1986 सिमड़ी गूंज कार्यक्रम है ना उन मायने पहली भूम जी और ओम जी रे नाम सीधा जी का के नारायण सिंह भाटी तो भूम जी बनता है कान सिंह राठौड़ा जी को ओम जी बनता है तो जो उन कार्यक्रम में भी मैं खुद जो है प्रस्तुति देव लाग गया और उन बाद मैंने जो सीमाड़ी गूंज और

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम अलग अलग होता और जो खेती बाड़ी कार्यक्रम तो मैं और एक चौधरी भाई करेक्टर रूप रामायण बैठता लवेश कुमार जी परमार रहा जब भी बैठता और बात आए कि उन बाद रामायण आकाशवाणी रो इतिहास बहुत लंबो रियो खेती बाड़ी इन दोनों मिला रहे चौपाल कार्यक्रम नाम हुई एक नयो कार्यक्रम शुरू करी दियो जिन मायने मैं खुद मारे नाम हो यानी कि तंजीर नाम हो बैठता और हमारे साथ है भोड़ जी एक गोविंद त्रिवेदी या भोड़ी रूप रामायण बैठता तो इन्हें साथ ही मैं शुरू में कई साल तक जयफू खान जी भी हमारे इन कार्यक्रम बैठ रहा जी के जफर खान सिंधी हा वे आज देखो आज दुनिया में नहीं है पर मोरो भी साथ इन चौपाल कार्यक्रम माने बहुत मिलियो और इन साथ है जो आकाशवाणी जोधपुर जो मैं 81 री बात करूँ 81 रे महीने अटे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर होता उन टाइम में डायरेक्टर कोई जो है पोस्ट नहीं ही बात 84 में आई और उन टाइम में अपने मुरली मनोहर मंजू साहब हा सहायक निदेशक वे इंटरनेशनल कमेंटेटर हा और जिन टाइम भारत पाकिस्तान रहा मैच होता जो लोग मुरली मनोहर मंजू साहब ने सुनने वास्ते दीवाना हा तो बात आये कि आकाशवाणी जो जो भी एक माइक माते जो भी आदमी आवे नी वे जनता सिर्फ वन लारी जो है वन जानिया करे कि उनने बात मायने उन्हें ध्यान ने के माइक के अलावा भी बहुत बड़ो जो है संगठन है आकाशवाणी जोधपुर जिन मायने प्रोग्राम सेक्शन है इंजीनियरिंग सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है सब मिलने आकाशवाणी जोधपुर बनिया करे इन्हें बहुत बड़ो जो है लोगों का कामकाज रहे और साथ है जो ये जो पहली अपा चिट्ठी पत्री कार्यक्रम होते अपने जिन्हें राजस्थानी पड़ोसर कार्यक्रम क्या होता वो कार्यक्रम भी बहुत जो है अपने के लोगों जुड़े हो लोग ठेठ दूर दूर कागज लिखता जाने मने पतो लागतो की अपना आकाशवाणी जो प्रकट तक सुनी जी है जो के हाँ आप अफगानिस्तान ही कागज आता अपने कने और नहीं जिन टाइम कारगिल युद्ध हो तो उन टाइम अटारा जो फौजी की ओर कारगिल मायने वे कागज भेजता है और लिखता भी है कि आपको कार्यक्रम भी सुना और उन्होंने खासकर जिनमें खासकर एक रात्रा जो एक फरमाइशी राजस्थानी गीता और भजनों और फरमाइशी कार्यक्रम हो तो गीत गंगा उन्हें लोग बहुत सुनता तो फरमाइशी कार्यक्रम रूप में मायने बहुत दूर दूर से कागज आता और जिनमें अपने एक पहचान भी बनती
1: तो सर जी अगर आप बोले हो कि एक पहचान भी बनती और दूर दूर चिट्ठियां भी आया करती तो वे समय रेडियो पर लोग बहुत रंगीन चिट्ठियां लिखोड़ी होती अलग अलग डिजाइन बनोड़ी शाही बनोड़ी और बमे बहुत कुछ भावनाएं और संवेदनाएं हुआ करती तो चिट्ठी से जुड़ोड़ो कोई इसो किस्सो है जिसको आपने याद है और आज जब आप याद करो तो मन में एक भावुक हो जाओ
0: बिल्कुल सही बात है देखो आराधना जी लोग एक काल्पनिक दोस्तों की रेडियो में कोई के फोटो तो दिखे को नहीं तो जी हमें मैंने बहुत जी कार्यक्रम देवता नहीं तो भी आपने मन में एक विचार कर के जंजी अड़ा वेला बहुत जी अड़ा वेला उनमें से एक फोटो बना परा ने नीचे आपने जो है नी चौपाल कार्यक्रम ने मायने लोग चौपाल में बैठा है ने भी सब सुन लिया है बीच में रेडियो पड़ियो है इन तरह एक बहुत अच्छा फोटो बना बना में कई बार भेजता तो उन लागत के जो अपने श्रोता है वे कई तरह का श्रोता है कई तरह का कलाकार है चित्रकार है वे अपनी भावनाओं कागज के माध्यम भेजता पहली जो अपने अंतरदेशी पत्र हा या पोस्ट कार्ड हा हमारे माध्यम से भी भावना आप ही भेजता यानी कागज भेजता आजकल तो देखो समय बदल गया है कंप्यूटर युग आ गया है और चिट्ठी पत्र तो हमें बंद हो गया बहुत कम ही आता वेला
1: बिल्कुल अब तो ईमेल का जमानो आ गया
0: हाँ अब जो जमानो बदल गयो पर ईमेल लोग जिनकने है तो सब जुड़ी है पर चिट्ठी पत्री तो आदमी कदे भी गांव रिमाइंड ढाणी में बैठो वो जो है आप भावना लिखतो और मर्द तक पास तो हमें कोशिश करता है कि भी हर चिट्ठी जवाब भी देवा है ना
1: तो
0: इन तरह कार्यक्रम चलतो
1: तो सर जी आप अभी थोड़ी देर पहला बोले कि आप जहाँ चौपाल प्रोग्राम दिया करता खेती किसानी और लोग संस्कृति रो कार्यक्रम हो तो विन समय बहुत सारा श्रोता जी का है बड़ा ही आपने चाव से सुनाया करता तो विन भी कोई छोटो सो कोई किस्सो अगर आपने याद है जो
0: देखो
1: बड़ा ही सुंदर हो तो याद है तो बताए
0: हाँ हाँ हाँ जो किस्सो तो यूँ है आराधना जी के लोग अपा स्टूडियो में बैठा कार्यक्रम देवानी और कौन बैठो कटे सुनियो अपने ध्यान नहीं पड़े वे सब पथ जो है ने कागज लिखते उनके मिठा पड़ता और रेडियो की कई पहचान है गांव मायने वो तो मैं आज भी जाऊं जाने पता लगे कि भी रेडियो ने बड़े जो है ध्यान लोग सुनिया करे और एक मैं जो किसो बताऊं आपने कि उनके में एक टाबक

तो आज इन कार्यक्रम में देखो फोन लाइन जरिए आप बात करिए आकाशवाणी रवे अनमोल रतन जिका मतलब सम्मान्य है आपा बने आज भी क्या वाणी की याद करा। और आज वाणी आवाज जिकी है सुरीली वा फिर सू आप रेडियो पर सुनी और आवाज और आज जिकी संवाद शैली ही इसू के वनी 90 साल जिकी यात्रा पूर्ण हो रही है इन्हें यादगार बना दी। आप सभी गुणीजन उद्घोषकारों आज आप जोधपुर से जुड़ने वास्ते आकाशवाणी जोधपुर से जुड़ने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। आकाशवाणी ने ऐतिहासिक पड़ाव री ढेर सारी शुभकामना है। तो आज री प्रस्तुति ही राजेश लामरोड और संयोजन हो मनीष सोलंकी इन रेसागी ही आप सुलेवा सीख आप रिसकी आराधना जोशीरा घणे मान राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने

0: करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत।

स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार हिन्दी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी

0: परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरूष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
3: जी
2: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 88

0: 8044045559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते।

0: खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: प्रिय है, सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोक

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर NCC का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया।

0: किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
2: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
3: धन्यवाद श्रीमान।
2: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
3: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
2: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
3: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
2: बेस्ट ऑफ लक।
4: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
4: युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
5: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
6: जी, हम तैयार हैं।
5: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
7: वो क्या साहब?
5: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
7: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
5: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
6: जी साहब।
5: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत हो।

0: होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली,
2: आयो गोरखाली,
1: जय महाकाली,
2: आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली,
2: आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली,
2: आयो गोरखाली।
4: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
5: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
3: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
4: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
3: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
4: बहुत

0: अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
1: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हमारी यह सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए इस सभा में सबसे पहले सुने युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवा।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और आज यहाँ मेरे साथ है
1: दोस्तों, मैं हूँ अदिति मौर्या। शाम का वक्त है, ट्रैफिक धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा है, चाय की क्रेविंग भी शुरू हो चुकी है, और इसी परफेक्ट इवनिंग वाइब के साथ हम आ गए हैं आपके साथ और एक प्यारी सी प्लेलिस्ट लेकर, जो इस गर्मी के मौसम में आपको हसीन वादियों के दर्शन करवाएगी और आपको ठंडक का एहसास करवाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ ही हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गर्मा गर्म टॉपिक्स पे, जिनमें होंगे ट्रेंड की कुछ बातें जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, हम जो सारे दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और बहुत सारी गपशप। तो चलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है उसकी अब शुरुआत करते हैं हमारे इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: अगले कुछ वक्त तक ना हम बातें करने वाले हैं लाइफ की, यूथ की, ट्रेंड्स की, ओवरथिंकिंग की और उन सब सिचुएशंस की जहां हम सब बोलते हैं यार ये तो मैं ही हूँ।
1: बिल्कुल, और काफी चीजें आपको रिलेटेड

0: भी लगेंगी और काफी आप सोचोगे अच्छा ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना आज की जनरेशन की लाइफ थोड़ी फास्ट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, और कभी मोटिवेशनल रील चल रही होती है तो कभी इमोशनल प्लेलिस्ट।
0: बिल्कुल, और कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, ये जो इमोशंस का हमारा रोलर कोस्टर है जिसे हम रोज हम सब फेस करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और आपसे हम बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे और आप ही हमसे रिलेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे। तो अदिति कैसा रहेगा आज का हमारा ये सफर?
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बीच में एक डिबेट होने वाली है।
0: हाँ
1: हाँ, तो मैं ऑडियंस जो है, हमको जो सुन रही है, उनको पहले ही बता दूँ, अगर आपको डिबेट सुनने में या क्या बोलते ना
0: क्या बोलते हैं, बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल
1: हम एक दूसरे को, हमारी बात काटने वाले एक दूसरे से, तो वो जो आपको गॉसिप में मजा आएगा ना, तो आप उसके लिए ट्यून इन रहिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: यार डॉली मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। ये आजकल का जो है ना वॉइस नोट कल्चर मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे इसमें क्या खराबी है, इतना बढ़िया तो है वॉइस नोट कल्चर, कितना हेल्पफुल है हमारे सबकी लाइफ में।
0: कैसा हेल्पफुल है, मेरे को तो टेक्स्ट या राइटिंग जो होती है हम पेपर पे जो लिखते हैं वो ज्यादा बेटर लगता है।
1: पर अदिति अगर मान लो तुम कहीं जल्दी में जा रही हो और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इतना लिख के और इतना टाइप करके भेजो, तो तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल होगा कि तुम 1 सेकंड में सारी डिटेल शेयर की और सेंड हो गया मैसेज।
0: पर ये ऑफिस में थोड़ी आपके वर्क करेगा, डिटेल्स तो मेनली तो उसमें जाती है।
1: बट फिर भी कितना फास्ट और कितना कन्वीनियंट है। प्लस इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हो सकता है जिसमें तुम हार जाओ, जैसे
0: अच्छा।
1: कि हम कुछ भी हम बताना चाहे तो टेक्स्ट में जो हमारा रियल जो इमोशन है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन वॉइस नोट में बता सकते हैं।
0: हम इमोजी यूज कर सकते हैं अगर टेक्स्ट मोबाइल में कर रहे हैं तो।
1: पर वॉइस नोट में टोन पता चलती है ना कि किस टोन में बोला गया है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे हाँ। कि हमारा टाइपिंग का जो एफर्ट है वो कम हो जाता है।
0: पर टाइप करने से जो हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारी जो हमें खुद के थॉट समझने की जो पावर होती है वो राइटिंग से ज्यादा होती है,
1: पर
0: ना कि वॉइस के उससे।
1: पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तो कम होती है।
0: सोच सकते हैं ऐसा। पर अगर जैसे आप क्लासरूम में हो, ऑफिस में हो, तब आप ना रिकॉर्डिंग सुन सकते हो ना किसी को भेज सकते हो, तो तब वहाँ टेक्स्टिंग ही काम आती है।
1: पर अगर बहुत हमारा कुछ ऐसा स्केड्यूल है या कुछ ऐसा मोमेंट है जहाँ हमें बहुत लॉन्ग एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा,
0: वो कर सकते हैं वॉइस पर।
1: और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए,
0: हाँ
1: उनके लिए
0: बिल्कुल।
1: कितना, अब इस पे तो तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं होगा।
0: बिल्कुल नहीं है, पर जो जनरलिंग होती है हमारी उससे हमारे थॉट जो है हम वो हमको समझने में बेटर करता है टेक्स्ट या राइटिंग। और जो लेटर्स लिखते हैं उस वो भी एक इमोशन था एक जमाने का जो अब मिसिंग है इस कल्चर से। तो वो तुम इस डिबेट में तो नहीं जीत पाओगे कि उस जमाने के लेटर्स अब काम नहीं आते।
1: देखो वो इसका तो देखो कंक्लूजन पे अगर हम आए तो वो यही रहेगा हाँ। कि हर किसी इंसान की इमोशन को एक्सप्रेस करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है, और जनरेशन भी वैसे बहुत अलग अलग टाइप की है। जो लेटर्स का जो टाइम था उस वक्त की जो जनरेशन थी, जो लोगों की सोच थी और जो भी सब कुछ काम जिस तरह से चलता था वो काफी अलग था आज के टाइम से। आज हर चीज फास्ट है और इसके फायदे नुकसान दोनों है।
0: उससे अगर फास्ट लाइफ है तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है। और जैसे अगर मैं वॉइस नोट भेज रही हूँ तो मेरी एक पर्सनल वॉइस उसमें यूज हो रही है, वो मेरे को नहीं पसंद आएगा कि हर कोई मैं किसी को वॉइस भेजूं अपनी। ये इसका एक
1: बात तो तुमने सही कही है। तो चलिए इस टॉपिक पे हमें और
0: ये बहस चलती रहेगी दोस्तों हमारी, पर आप सुनिए ये वाला सॉन्ग।

0: वेलकम बैक टू यू वन दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक्स पे, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है अटेंशन स्पान। यानी कि आजकल 10 सेकंड की जो शॉर्ट वीडियोस जो हमें शॉर्ट होके भी हमें लॉन्ग लगने लगी है, और वो उसका कारण भी ये है कि हमारा जो अटेंशन स्पान है बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
1: बिल्कुल, जो भी छोटी सी भी एंटरटेनमेंट रील होगी हम देख के स्क्रॉल कर देंगे, अगर उसमें एक चीज नहीं पसंद आएगी तो हम स्क्रॉल कर देंगे, तो ऐसे हमारा जो फोकस है वो भी कम होता जा रहा है, और जो हमारी थिंकिंग स्किल है, हमारी मेमोरी है, उस पर भी इसका इफेक्ट काफी होता है।
0: हाँ बिल्कुल, और जैसे बोलते हैं ना, अब कोई भी रील बना रहा है जो उसमें हुक है, मतलब जो फर्स्ट के 5 सेकंड या 3 सेकंड में अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो उस रील को हम देखेंगे, नहीं तो हम उसको स्क्रॉल कर देंगे, और अगर उसमें कुछ काम की बात की भी गई हो, कुछ काम का कंटेंट हो उसमें, तो वो भी साथ में स्क्रॉल हो जाएगा।
1: तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो आजकल की जो भी ये शॉर्ट रील्स बन रही है वो बनी इसलिए रही है ताकि जो आगे के जो 5

0: सेकेंड है उस पे सब फोकस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने वीडियोस बनाते हैं ताकि ये तो आप नहीं करेंगे तो आप देखना चाहेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा पूरा देख लेंगे और अपना टाइम वेस्ट भी कर देंगे।
1: हाँ, तो वो जो स्टार्टिंग के 5 या 3 सेकंड होते हैं इसी में वो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो हमें उसमें रोक के रखता है।
0: हाँ।
1: और एक्चुअली वो ये जो चीज है, पर एक एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एक रील हमें पसंद आई, हमने देखी, फिर दूसरी में भी हमें पसंद आई, फिर हमारा जो वो लूप होल में हम फंस के रह जाते हैं,
0: स्क्रीन टाइम भी
1: बढ़ता रहता है और जो डोपामाइन हमें लगता है कि हमें खुशी मिल रही है और हमें मजा आ रहा है, वो एक्चुअली हमारे लिए एग्जॉस्टिंग होता है, कंज्यूमिंग होता है बहुत ज्यादा।
0: इससे स्क्रीन टाइम बन रहा है और हम फैमिली टाइम भी इससे कम दे रहे हैं। और
1: फैमिली टाइम क्या, हमारा काम पे, पढ़ाई पे,
0: इफेक्ट पड़ता है,
1: हर चीज पे हमारा कंसंट्रेशन तो चाहिए ही होता है, तो हमारा फोकस कंसंट्रेशन बहुत
0: बिल्कुल ये 10 सेकंड के डोपामिन इंक्रीज के लिए सर्च के लिए हम अपनी जो है वेलनेस, अपनी मेंटल हेल्थ छोड़ देते हैं।
1: हाँ, और इसको चेक करने के लिए अदिति हम ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने दोस्तों के साथ बैठे और कुछ एक ऐसा जो हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं ना, गर्मा गर्म मुद्दा जो अभी चल रहा है उस पर बैठ के हम बात करें, तो उस लोग बात ही नहीं कर पाते
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कॉन्वर्जेशन अच्छी होने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए अच्छा कंटेंट और बहुत सारी इतनी कैपेसिटी चाहिए कि आप डिस्कस करो अच्छे से बैठ के, थोड़ी देर से ज्यादा बात ही नहीं कर सकते
0: बिल्कुल, क्योंकि हम देख ही 10 सेकंड की रील रहे हैं और उसमें जितनी आपको इन्फॉर्मेशन परोसी गई है हम उतना ही बोल पाते हैं
1: और उतने में ही थक जाते हैं।
0: तो जरूरी है कि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी पूरी रील तो नहीं, पूरे वीडियो जरूर देखें।
1: हाँ,
0: जो
1: लॉन्ग वीडियोस देखें
0: जो अच्छा काम के हैं।
1: ऐसा नहीं कह रहे हम कि आप और हम जो फोन जो भी डिजिटल जो हमारे आसपास सारी चीजें हैं वो हम छोड़ ही दें, और वो पॉसिबल भी नहीं है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हम उसको कम तो कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम शॉर्ट वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक ही ना करें, लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर करें,
0: यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डालिए।
1: हाँ बिल्कुल, और अगर शॉर्ट वीडियोस में हमें मजा आ रहा है तो मूवी देखने में और भी मजा आएगा, तो एक अच्छी मूवी सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं अगर हमें एंटरटेनमेंट ही चाहिए,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और अच्छे गाने सुनने तो आपको पता ही है आप कहाँ हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ।
0: तो अब चलिए सुनते हैं ये वाला सॉन्ग।

0: क्या कर रही हो लॉली?
1: अरे वो मैं पेपर को फेंक रही थी, वो यूजफुल नहीं है ना।
0: तो तुम यही तो नहीं फेंकने वाली हो?
1: अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे।
0: तो कहाँ फेंकने का सोच रही हो तुम इस पेपर को?
1: वैसे मैंने कुछ सोचा ही नहीं,
0: मतलब चलते फिरते कहीं भी फेंकने का सोच रही हो ऐसा?
1: नहीं ऐसा कुछ पर्टिकुलरली। मैंने तुम कहना क्या चाहती हो?
0: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीरो सिविक सेंस डॉली, जीरो सिविक सेंस।
1: अरे अदिति ये क्या कह दिया तुमने, बहुत ही बहुत खतरनाक टॉपिक तुमने याद
0: दिला
1: दिया।
0: ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है कि ऐसे गंदगी फैलाते फिरते हैं लोग।
1: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने ऐसे एक्शंस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैंने कुछ मेरे हाथों से कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं उसे क्लीन हाथों हाथ करती
0: हूँ। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं कि लोगों के जो पब्लिक एटिकेट्स हैं इन पब्लिक प्लेसेस वो बेटर हो, जो सिविक सेंस है उनका वो बेटर हो। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं लॉली?
1: अदिति सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें करना ही क्यों है। करना इसलिए है क्योंकि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा बेड हम सही करते हैं, हमारा वॉशरूम हम सही करते हैं, और अगर हम सही रख रहे हैं और हमारे घर में और कोई मेंबर है जो नहीं रखते, तो उन्हें भी हम सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, आपको सही रखना पड़ेगा इसको।
0: जो आप जो चीज खुद कर रहे हो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कहीं बाहर जाके गंदगी कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप साफ करो उसको। या आप जैसे बस में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आप मोबाइल चला रहे हैं या शॉर्ट वीडियोस या रील्स देख रहे हैं तो एकदम हाई वॉल्यूम पे देखने लग जाते हैं कुछ लोग, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और उसको अब क्योंकि एक पब्लिक प्लेस पे रहे हैं तो सबका सोच के आपको देखना है, तो कम वॉल्यूम पे या आप ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं। और जो है जैसे थिएटर में भी लोग जो स्क्रीन की जो डिस्प्ले लाइट है वो एकदम हाई रखते हैं, तो उससे आपके जो पास बैठा है उसको भी डिस्टर्बेंस होती
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
1: छोटे छोटे ऐसे ऐसी ये छोटी छोटी बातें तो ही होती हैं जिन छोटी होती है तभी लोग सीरियस नहीं लेते कि क्या हो गया, एक ने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। अरे भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी जगह जहां एक्चुअली लोग रिस्पॉन्सिबल है और तभी उनकी सिटी, उनकी जो भी आसपास की स्पेस है वो क्लीन रहती है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता,
0: बिल्कुल हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने ना एक वीडियो देखा था जो जापान का था, तो उसमें एक लेडी मेट्रो से जा रही थी तो उसका एक जो ड्रिंक था हाथ में वो स्पिल हो गया, तो वो क्या करती ना अपने ही रुमाल से पूरी वो जो गंदगी उसने करी थी वो साफ करती है और चली जाती है। मतलब उसके लिए रेगुलर डे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये किसी ने भी उसको नहीं कहा था कि ये आपने गंदा करा है आप साफ करो, या उसके लिए उसने पेनल्टी भरी हो, कुछ नहीं। बस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि खुद ने गंदा करा था।
1: ये अपने आप में एक रेस्पेक्ट की बात भी है कि आप अपनी इज्जत करते हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह की आप रिस्पेक्ट करते हो तभी आप उसकी केयर

0: कर रहे हो।
1: बिल्कुल, ये चीज हम सब में होनी चाहिए और हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए।
0: बिल्कुल, तो ऐसे ही आप भी अपने आसपास के जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी आप जिन्हें भी देखो कि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो आप उन्हें बताएं और खुद भी सीखें और सिखाएं।
2: Natural night. Do you feel alright? What a natural night.

0: वेलकम बैक दोस्तों। आज पूरे देश की नजरें ना टिकी हुई हैं आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबले में से एक पर, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स यानी क्वालिफायर 2। जो टीम आज जीतेगी वो फाइनल में पहुंचकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टकराएगी और जो हारेगी उसका आईपीएल सफर यहीं समाप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इमोशंस हैं हमारे लिए और हर सिक्स पर दिल उछल कूद करने लगता है, हर विकेट पर सांसें हमारी थम सी जाती हैं और हर मैच अपनी एक नई कहानी सी लिखता है।
0: बिल्कुल, एक तरफ गुजरात टाइटंस जो पूरे सीजन में जबरदस्त क्रिकेट खेलते आए हैं, दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो एलिमिनेटर जीत कर जबरदस्त मूवमेंट के साथ आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, युवाओं के लिए आईपीएल अपने आप में एक इंस्पिरेशन है और बहुत सारी चीजें सिखाता है, हार्ड वर्क, टैलेंट, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, इन सब का जो मिश्रण जो है वो हमें नजर आता है।
0: बिल्कुल, आज के मैच में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यंग स्टार्स है वो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक शानदार सा आईपीएल मैच के लिए, क्योंकि मैं तो सपोर्ट करने वाली हूँ अपनी आरआर को।
1: क्या बात है, सेम हियर।
0: तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार आईपीएल रात के लिए।

0: से स्वागत है आपका दोस्तों कार्यक्रम युवानी में, जहां मैं हूँ डॉली और
1: मैं हूँ अदिति।
0: क्या बात है अदिति। तो मेरे हिसाब से अदिति अब वक्त आ चुका है वर्ड ऑफ द डे बताने का। तो अदिति आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है?
1: देखो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका जो ये एक क्या बोलते हैं ना, एक्शन है हमारा।
0: तो तुम ऑरा बनाना चाहती?
1: बिल्कुल ऑरा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ना जो हम सबसे ज्यादा वेट जब जो वुमेन करवाती हैं वो होता है कांच के सामने हम जब रेडी हो रहे होते हैं, है ना, सब अग्री करते हैं इसमें। तो इस वर्ड मतलब ये जो एक्शन है हमारा उसके रिलेटेड है ये वर्ड।
0: अच्छा, मतलब हम जब रेडी हो रहे होते हैं मिरर के कांच के सामने। तो लेडीज जो तुमने वर्ड यूज किया है वुमेन, मतलब तुम कहना चाहती हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, कुछ रिलेटेड तो नहीं है?
1: कोई जल्दी भी तैयार हो जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप टाइम लेके भी आप सुंदर दिख सकते हैं, टाइम नहीं लेके भी आप सुंदर दिख
0: सकते हैं। टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं,
1: बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर जो ये वर्ड है जो है प्रिम्पिंग, ये यूज होता है स्पेसिफिकली जब आप कांच के सामने तैयार हो रहे होते हैं।
0: ओह, तो वर्ड जो है उन्होंने बता दिया है, वर्ड है प्रिम्पिंग। प्रिम्पिंग यानी
1: उसका मतलब यही है कि जब कांच के सामने आप तैयार होते हैं तो प्रिम्पिंग वर्ड यूज करते हैं, जिसका स्पेलिंग है PRIMPRIY।
0: बिल्कुल, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अगर हम बात करें इसके पीछे की साइकोलॉजी की अदिति, तो हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि कई बार ये चीज जो है वो हानिकारक भी हो जाती है। क्योंकि कई जरूरी नहीं है ये लेडीज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, हम जेंट्स की कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं। आजकल जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ये सारी चीजें जो चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया दिखावा जो है उसकी तरफ बहुत आगे बढ़ चला है, अब तो बहुत आगे पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो ये जो प्रिम्पिंग है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है मेरे साथ।
1: बिल्कुल, आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से, मतलब कि जो ये दिखावा है वो चीज हमको कम करना है और अपनी नेचुरल ब्यूटी जो है वो, वो
0: और नेचुरल ब्यूटी की एक नेचुरल ब्यूटी मतलब नेचुरलनेस आपके अंदर। आप ऑफ कोर्स आप सब लोग हमारी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो प्रेजेंटेशन है अपने आप को लेकर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा बेस्ट वर्जन होना चाहिए, लेकिन वो उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि हमें किसी का वैलिडेशन चाहिए।
1: बिल्कुल, किसी से कंपेयर करके आप मतलब उससे ज्यादा खूबसूरत दिखना है मुझे, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए।
0: आप जैसे हैं हमें खूबसूरत,
1: बिल्कुल आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंट फील करिए, तो आप असली में ब्यूटीफुल कहें।
0: और क्या है ना, इसमें एनर्जी भी कितनी सेव होती है ना, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, हम जो है बिल्कुल बढ़िया है।
1: आई लव मी, ये कहना, आप सेल्फ लव करना शुरू करिए।
0: तो चलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ, आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे था
1: प्रिम्पिंग।

0: अदिति, बहुत भारी मात्रा में कमी हो चुकी है मार्केट में।
1: किसकी? विटामिन डी की?
0: नहीं, वो तो भर भर के मिल रहा है, इतनी तेज धूप है। कमी हो गई है मेंटल पीस की।
1: ओह, ऐसा क्यों?
0: अरे बहुत ज्यादा, हर चीज में जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी भागो भागो भागो भागो, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, इन सब के चक्कर में दिमाग का जो दही हुआ है।
1: बिल्कुल, ये तो मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट से। इतनी भागदौड़ अब हमारे लाइफ में भी हो चुकी है, यूथ के लाइफ में, खुद के बारे में सोचने का ही वक्त नहीं है हमारे पास।
0: अरे खुद के बारे में सोचने

0: वक्त की क्या बात है, बात है किसी से पूछो कि अरे हम वहाँ चले, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, अरे ये क्या बात हुई, टाइम नहीं है। टाइम तो एक्चुअली है, आपकी प्रायोरिटीज डिसाइडेड नहीं है एक्चुअली।
1: हाँ, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी लाइफ, कब कौन सा क्या टाइम देना है आपको, किस चीज को कितना टाइम देना है।
0: बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिस जो हम एक वर्ड होता है हसल कल्चर, जो हम हसल कर रहे हैं लाइफ में, मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम ढूंढ क्या रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे लगातार भागे चले जा रहे हैं, चले जा रहे चले
1: और
0: जा रहे।
1: जैसा किसी को पता भी है उसको क्या चाहिए, वो मिल भी जाता है, उसके बाद क्या,
0: उसके बाद क्या। हम जैसे वो बोलते ना, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, अब वो एक दिन आ गया, वो एक्चुअली वो एक दिन की होती भी नहीं है, वो कई सारे दिनों की, हम रोज सफलता जो हम पाने की, जो सक्सेस हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली कंसिस्टेंट और हमें रोज जीत महसूस हुए ना, तो वो एक्चुअली क्या, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, लाइफ एक अपने आप में एक एहसास है,
1: जर्नी
0: एक जर्नी है
1: उसको आपको,
0: हाँ मजा असली उसी में है जर्नी में, और जब आप इतनी मजेदार जर्नी से गुजरते हुए जब उस एक दिन पे जाते हैं, तो वो एक दिन स्पेशल हो ना हो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, और हमको सफलता को है ना एक पॉइंट, एक उससे मेंटल पीस हमारी नहीं होनी चाहिए कि हमको ये अचीव कर लिया हमने तो ये हम खुश रहेंगे, या ऐसा जो आपकी जर्नी है वो आप अगर ब्यूटीफुल बनाते हैं, एक एक जो आपके स्मॉल स्टेप्स हैं वो आप अचीव करते हुए चलिए, तो आपको मेंटल पीस भी मिलती रहेगी और आप सक्सेस की तरफ चलते भी रहेंगे।
0: और एक और पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, वो है बैलेंस, अपने गोल्स और अपनी हेल्थ या जो भी आपके कनेक्शंस हैं उनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रही हो आज डॉली तुम।
0: हाँ क्यों नहीं।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कुछ भी है ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो एक अच्छा सा गाना भी सुनवा दे।
0: हाँ ये रहा।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: तो दोस्तों आज हमने की बहुत सारी बातें और सुने प्यारे प्यारे से गाने, जहां मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली, और आज यहाँ मेरे साथ थी
6: मैं अदिति मौर्या। इसी के साथ आज की ये खूबसूरत शाम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की बातें, हमारी बातें आपको पसंद आई होगी और शायद थोड़ा सा स्माइल भी दिया होगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमारा गोल था।
6: तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे आपसे अगले युवाणी में।
5: बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेश लामरूड और संयोजन मनीष सोलंकी।
6: नमस्कार।

0: युवा श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ

0: बात हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable, leak-proof security. Grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that LPG production is all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
3: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery and that impacts the production and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
2: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आइए आपको बता दें आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले सुनिए आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 10 बजे से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हर मंगलवार और शुक्रवार प्रसारित किया जाता है। शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए सजेगी चौपाल सीमा डेरी गूंज। ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8 बजे और रात 9:30 पर। रात 9:15 पर सुनना न भूलिएगा सुगम संगीत। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की और अब कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कल रात 9:30 पर रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे आप सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

रिले किया जाएगा। सुबह सवेरे का जानकारियों से भरा कार्यक्रम। नमस्कार, सुबह 8:30 पर सुनिएगा। शाम 6 बजे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी होगा। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम का समय रहेगा, प्रातः 7 बजे। सुबह 6:05 पर श्री रामचरित मानस सुनना न भूलिएगा। इसके ठीक बाद सुबह 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आपको सुनवाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में दिन में 1:05 पर चर्चा सुनिएगा, नीम आधारित बायो पेस्टिसाइड कैसे बनाएं। दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी वाटिका प्रसारित किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे और 7:30 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज सुनना न भूलिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है देश गान।

0: ओडिशा राज्यस्य छत्तीसगढ़स्य गुजरातस्य च अनेकेषु भागेषु सामान्यात् अधिकं उष्ण तरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। केन्द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह अद्य अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं सुदृढ अर्थव्यवस्थारूपेण उद्भूतमस्ति तथा च वस्त्रोद्योग क्षेत्रे परिष्कारैः नीति समर्थनेन च द्रुतगत्या वृद्धिः साधिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां मन्त्रिणा कृष्णामण्डलस्य मल्लवल्ली औद्योगिक उद्याने मोहन स्पिनटेक समवायस्य भ्रमणं कृतम्। सः अवदत् यत् भारतस्य वस्त्र आपण मूल्यं सम्प्रति 15 लक्ष कोटि रूप्यकाणि अस्ति तथा च 2030 वर्ष पर्यन्तं 25 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकं कर्तुं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् अस्ति। कर्णाटकस्य राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः अद्य बेंगलुरुनगरे मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं स्वीकृत्य तत्कालीनेन प्रभावेण मन्त्रिमण्डलं विघटयत्। परञ्च यावत् कार्यवाहक मुख्यमन्त्रिरूपेण वैकल्पिक व्यवस्था न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्मिन् काले किमपि निर्णयं न स्वीकर्तुं सहैव अस्मिन् पदे यथावदेव भवितुम् आदिष्टम्। सिद्धारमैया वर्यः ह्यः लोकभवने स्वस्य त्यागपत्रं समर्पितवान् आसीत्। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले महाराजा यादवीन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। विजेतृदलं रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह स्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अब सुनिएगा।
2: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देशभर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर व्यक्ति तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। NIA की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण

संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदण में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति

0: गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडाउन संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावण राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम

0: हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्णनगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क की सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावण प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूरदराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। यह पहल नीति आयोग के फंड से शुरू की गई है। इससे दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियों में एएनएम की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत सहित कई काम किए जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर और रामदेवरा रेलवे स्टेशनों का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहां यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्णनगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्ट ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेज हाल ताई देश रा 40 लाख घरां रे छत माथे सूरज री रोशनी उं बिजली बनावण री मशीना लगाई ची। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हल्का माय आंधी बारिश हूं लू और तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताईचियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगळी हाई कोर्टान सुरक्षित राखियोडा फैसला 3 महीना री मियाद माय सुनावण रा हुकम दिना है।

0: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची री पीठ व्यक्तिगत आजादी जुड़िया मामला में तुरंत फैसला री जरूरत में थे जोर दिनो। पीठ कहो कि जमानत री अर्जिया में थे हुक्म वहीं दिन या आवता दिन सुनाया या अपलोड कर दिया जाना चाहिए। अदालत कहो कि जमानत या सजा निलंबन रो हुक्म सुनावन रा तुरंत पाछे जेल रा अहलकारा ने जानकारी देवनो जरूरी है। पीठ कहो कि विचाराधीन कैदी ने जमानत मिलताई वहीं दिन या आवता दिन जेल छोड़ दियो जाऊनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामला में दायर अर्जियां माथे आज ही सुनवाई की नी। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ कहो कि ई मामला में चूक री जिम्मेदारी तय करी जावनी चाहिए। आ अर्जियां में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओजू बनावन या वन हटावन रो हुक्म देवन और वाणी ठोड़ एक मजबूत और स्वायत्त निकाय बनावन री मांग करी ची ही। ई मामला में आगली सुनवाई जुलाई महीना रा दूजा सप्ताह में करी जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ओजू ली जावन वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीकाओं बिना गलती करावन रो भरोसो दिरायो है। दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसो दिरायो कि सरकार विद्यार्थियों की चिंता समझे है। वह कहो कि परीक्षाओं जुड़ी चिंता बीचे इम्तिहान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगड़ा जतन कराया जा रहा है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश में हाल ताई 40 लाख मकान री छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीन लगाती रिची है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह कहो कि आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला। प्रदेश हुई राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करो जावणो है। इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करया जा सकेला। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो कि दाखिल करी जिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न सवार 9 सिंजा 4 बजा ताई वोट पड़ेला और वहीं दिन सिंजा 5 बजा वोटां री गिनती करी जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग में कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि 1 जून कमीशनिंग रा काम शुरू कर दिया जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में पेंशन लेवन वाला ज्यां लोगां रो हाल ताई सत्यापन नहीं करायो जा सक्यो है वारो आवता 15 दिन में सत्यापन करायो जावेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर में न्यारी न्यारी योजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग में ए हुकम दीना। वह कहो कि राज्य में करीब 89 लाख लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जहां मायों 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए री टीमा आज अजमेर और नीमराना हलका में कुछ थोड़ा छापा मारिया। एनआईए री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका में शंका वाली थोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला में पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ में

0: केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावन रो लक्ष्य नीचला लेवल मथ हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय का न्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल मथ जनता ने मजबूत बनावण मथ जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माए लोगा ने जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो कि गांवा माए हर एक जना ताई सुशासन एर न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माए साझा सेवा केन्द्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेत हाल ताई देश रा 40 लाख घरां री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना लगाई ची। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। अर राज्य रा कुछ हलका माए आंधी बारिश लू अर तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज अर काल घनखर ठोणा आंधी बारिश अर ओला पड़बा सारू चेताई चियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुने कार्यक्रम चौपाल।
2: गांव ग्वाड़ अर खेत खलियानरी बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़। सिंजिया 7 बजिया सुनो न भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको। झुमको कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

पतरी लिखू पी वने मारो कागज भीज गयो। अरे नेने जलड़ो मावे नहीं मारो ही।

रात अंधारी पवश पड़े कद पहुंचा पाला ए जुना बेर चितारिया जुना बेर चितारिया मारा बेरी।

0: पंजाब सो सतीश मिगलानी, सीमा शाइना विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल धर्मपाल, महावीर और रमेश मिगलानी रो।
1: बाले रो ओ कागज आयो है जय नारायण सोलंकी, राकेश सांकला, जितेंद्र सोलंकी, लक्ष्मण हरीश, विष्णाराम, गोपीलाल सोलंकी, इंदिरा राम सोलंकी और आना घराला।
0: झालावाड़ सो ओ कागज आयो है, लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर, काना सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। और ईमेल माने कन आयो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सो, लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी। जोधपुर सो अशोक कड़ेला और ए है धारू राम भूरिया। ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सो, भेजन वाला है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष सोडा, भव्यांश, रमनदीप और राम किशोर।
2: इन कार्यक्रम मुजब ईमेल और कागज लिखकर आपरी फरमाइश जका श्रोता सुननी चाहिए, बना नाम है इंदिरा विहार दिल्ली सो सुहान अंसारी, गुड़िया डब्बू और बेबी अंसारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार सू कल्पना वाल्मीकि और मैथिली वाल्मीकि, गांव बेरावास तहसील खिमसर नागौर सू। और ईमेल आयो है बुट्टाराम मेघवाल, सुनील मुकेश, भूराराम शोभाराम, लादूराम मंजू, मोनिका सुरता, पूजा और शारदा मेघवाल रो। राजधानी दिल्ली सू माने ईमेल भेजे अजीम वकार और गुड़िया बेगम,
0: वीरेंद्र सिंह उदावत, हिम्मत सिंह, मेघराज, पुष्पेंद्र सिंह, मनोहर सिंह, नरेंद्र सिंह, हिमांशु, वीर बहादुर सिंह, भरत सिंह और सगड़ो उदावत परिवार माने ईमेल भेजियो है जसवंताबाद नागौर सु। आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओहे फरमाइशी कार्यक्रम गीत संगीत रेण सफर में हम सफर है आपरे साथे आपरो साथी गुरविंदर बिश्नोई और ईमेल माने करने आयो है रामदेरा सु दिनेश चौहान रो गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी बाड़मेर सुई नाथुराम कोडचे माने ईमेल भेजे है गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी मेघवाल पटेल नगर मलोट पंजाब सु रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया माने कागज लिखियो है गांव नारवा इंद्रो का सुन नरपतलाल सोनी शिवम और वैशाली राजू राम सेन पद्मा सेन प्रतिज्ञा सेन और रामनिवास सेन माने कागज लिखियो है खारा बेरा भीमा

आगलो कागद है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी दुर्ग छत्तीसगढ़ सु माने ईमेल भेजियो है डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर और ईमेल आयो है गांव कुंदनपुरा बाड़मेर सु जगदीश सुमरा मोहनलाल नरेश कुमार निम्बाराम और अणा सगला घरवाड़ा गाँव आरंग तहसील शिव बाड़मेर सु बाबू राम जयपाल और कागद माने कने आयो है गाँव तापू तहसील ओसिया सु लिखियो है संतोका राम मेघवंशी पटकू धीरू अशोक भाटी कुसुम भाटी आरती एलची बिदकी भाटी लाखाराम भाटी दिलीप पार्वती दिव्या और आना सगड़ा घराड़ा मदनलाल झुरिया गजेंद्र शिल्पा मनप्रीत हेमलता झुरिया और आना घरवाड़ा माने ईमेल भेजियो है छिड़िया बावड़ी जोधपुर सु और कागज आयो है पांचवी रोड सु लिखण वाला है महबूब भाई मकबूल खान मोहसिन खान मुजाहिद खान अरबाज शहबाज मुकीना रुखसाना खुशबू नीलोफर और इमरान खान गांव अरनियाली तहसील धोरीमीना बाड़मेर सु फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण शारदा खत्री भाग्यश्री हार्दिक खत्री सूरज देवी और आनो सगलो परिवार आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

साथियां ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अब कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ नमस्कार।

0: अरे राम राम,
1: अरे राम राम, बात खुली है, ओडाल उड़ी है भाई।
0: हाँ सा,
1: और मैं कमरे में और है जा, मैं और भाई हूँ।
0: ठाडो है आप कमरों तो नवला बा,
1: ठाडो तो मैं कहूँ है कि मैं ठीक है कि कह नहीं पंपाल करा हो।
0: हाँ
1: तो नेनो आई भाई, कौन ओलकियो कोई नहीं किन्हीं,
0: हेलो ओलकियो कोई नहीं।
1: अरे भाई देखे खड़ो पांत्रो पड़न ढूंगो, उम्र परवाने करा कहीं।
0: हाँ आ बात
1: ओ ठीक ठीक कमल गल दो।
0: हाँ ओलक लिया, ओलक लिया,
1: हाँ ओलक लिया भाई, ओलक नहीं पड़े है। पर है रे भाई कमल,
0: और
1: तावड़ियों जोर पड़े नव तपो नहीं।
0: हाँ नवला बा,
1: अंतर काट दिया,
0: काट दिया सही, इतनी गर्मी पड़े है।
1: अरे पड़े पन भाई रोन तपे हो, और तपिये हैं कहने की बात हुई।
0: सही बात, जरूरी भी है।
1: हाँ जरूरी है, देखो के भाई कह तू कह है भाई के तपिया बिना कटी कह नहीं ठाट नहीं वे है कौन
0: है नवला
1: बा। और कह उसमें कह है भाई, मैं कहूँ है कि हुरजरी ही थी गर्मी अपन धरती मात पड़े।
0: हाँ
1: जो कहूँ कही है कुदरत का खेल,
0: खेल है नवला,
1: कुदरती बनावे कुदरती है जो को कह नहीं बिगड़े, ठीक है नहीं। पड़ा है कि जगह जानकार मान को है बे कह के दो मूसा दो कातरा दो टीडी दो ताव दो यारी बाड़ी जल हरे दो ही बिसरे दो ही बाव।
0: हाँ नवला
1: आप बात है, है। नौ दिन में थार कितना दिन गया पड़ा है जो खासा गया पड़ा।
0: हाँ सर चार दिन गया पड़ा,
1: चार गया पड़ा बड़े है जो को पांच दिन है टुकड़ों को जो जान कहने के मैं लूरा लपर कई जोरदार है न ऐ कोई जीव जिंदौरिया है नी।
0: हाँ सा
1: जेका नुस्कान घरो करे मिन्न करे आने कहनी के भाई बे आप रो काम करे पर बाने है जो कह भाई देखो थे तो कह पुगोन वाते कुदरत है जो को ओ है जो को नव तपो वो कह के वो टाइम लावे हो।
0: हाँ जमीने तपावे ताकि ए कीड़ा।
1: हाँ बात है के भाई उंदरी यही है जो उठाने लाग जा कादरी यही लाग जा तिड़ी रात कह इंडा है भाई फूट जान कोई बारे फिरो तो ताव तो पिया जे इंद कोई है जो कह नहीं कि हाँ बिचू दूजा है भाई ठाने लाग जी।
0: हाँ
1: पचे देखो तपिया पचे कह के भाई है बात बली हुई।
0: हाँ
1: पर एक बात है आ थे मुकड़ो गीतड़ो हुनता आया नहीं।
0: हाँ नवला
1: दया समा शांति है पर बा कह नहीं कुदरती आप रे हिसाब काम करे
0: करे करे
1: और मिनक ने आया दया समा शांति है जो को धारण करनी चाहिए। और यह धर्मारो कह नहीं भाई कह सार है,
0: सार है नवला
1: बा। दया धर्म का मूल है न पाप मूल अभिमान, ठीक है नहीं। पर आ है मिनक बजे कह नहीं निंदनु चक्कर में रहे कह माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कभी।
0: हाँ
1: समझिया।
0: हाँ नवला
1: और क्या है खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का है मेला। करनी आपो आपरी कुन बेटा कुन बाप है कर्मरी गटरी पाप तू मत भरे बंदे।

0: कर ले।
1: सही बात, कर्म शो का होना चाहिए।
0: और देखो कई चीजा मिन कई कई है जो कई जा कई होने कई करे। और ये बात है कि एक बात मारे मन में आई कमल,
1: कई आई सा,
0: बुरा न देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा अपना मुझसे बुरा न।
1: हाँ
0: है कौन?
1: सही बात है,
0: भलो काम तो मारू वह कोनी, है जो को था मारी निंदा करूं, बारी कुमिया काटू, पसे है जो कह नहीं के बारे लारे पड़ू, जब बस वो कह नहीं खुदरो जीवन तो ही हो, पर दूजे नहीं हाउल जीवन को दे,
1: कौन दे?
0: समझा नहीं?
1: हाँ नवलबा,
0: ये बात है, दया क्षमा शांति बहुत जरूरी है। और देखो तरह तरह त्योहारी मनाई, गान है गो गान काले ईद मनाई।
1: हाँ नवलबा,
0: तो भाई शहर कोई लारे रहेगा है।
1: हाँ।
0: तो बने आज है जो कुर्बानी त्याग रो जो और त्योहार है इन्हीं आज पाची मुबारकबाद हूँ दे दू।
1: हाँ
0: और तो कहूँ करो,
1: सही बात है।
0: दूजो भाई देखे शांति में सार है।
1: हाँ, और शांति वाली बात नवलबा बात याद आई। हाँ। आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हर साल 29 महीने मनावे है। इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर माता जी का शांति रे वास्ते आप प्राण त्याग नवलबा व्याने याद वास्ते और बनावे।
0: अच्छी बात है भाई, शांति कहनी भाई कटी कटी क्रांति हो जा।
1: हाँ,
0: हमें कई देशों में आपस में झगड़ा कहनी के दबी को
1: कोनी डबे न।
0: ईरान अमेरिका रो चले है, रूस यूक्रेन रो चले है, बड़ा छोटा मोटा चारू मेर कहनी के भाई बम गोला पड़े है,
1: पड़े है,
0: पर शांति में सार है। और शांति में कहनी के भाई मिनख रो है जो कहनी के भाई जीवारी नी बात सौखी है और की कोनी। दूजो तो मैं क्या भगवान बुद्ध ने भगवान महावीर ने भगवान अपर जीते ही होया बेहै कहनी भाई के अपन शिक्षा घनी देन किया
1: गया
0: भाई थे ये बात है वहाँ शिक्षा रो उजास पूरे संसार में फैलियो फैलियो को
1: फैलियो
0: और वे कह नहीं आका कई देश है जिको कह नहीं की आज भगवान बुद्ध रे मार्ग माता ले है और बहु है जिको कह नहीं की अपने घनी बातरी है और क्या उसमें क्या सभी प्राणी सुखी हो सभी प्राणी कह नहीं के शत्रु रही तो सभी प्राणी दोष रही तो द्वेष रही तो सभी प्राणी दुख मुक्त रहो और सभी प्राणी सुख पूर्वक अपना जीवन जिए ऐसा कोई संसार है।
1: हाँ,
0: तो बहुत शांति है सार
1: है
0: ठीक
1: है।
0: हूँ आ देखो हूँ यू करूँ हूँ थोड़ो कहूँ है कि नहीं वह तो गाबा है जो मारा बदल पड़ा।
1: हाँ,
0: और हूँ क्या नहीं संत महात्मा ओलिया फकीर बन जू तो।
1: हाँ नवलबा,
0: बन जू
1: तो,
0: मार घट में है कौन ज्ञान तो है नहीं
1: बहुत ज्ञान है नवलबा जनित मैं टावा बच्चे।
0: हाँ जब उनको देखो मारा विचार आयो।
1: हाँ,
0: मैं कह नहीं वह तो हूँ क्या नहीं के चोला पैरो जगत में चेला पाड़ो चार ठीक है नी तो थे मार चेला बन जाओ
1: बन जाओ नवलबा
0: पक्का। हाँ, कोई ले मार तुमड़ी ले जाओ।
1: नहीं नहीं नहीं आप
0: अरे भाई लोग लाल से मतलब विश्वास को बोली
1: विश्वास तो करना पड़ेगा।
0: विश्वास तो भाई देखे एक दिन बदन ढुको है विश्वास तो कह नहीं के भाई वह जड़ू वह विश्वास माती है के आशा है नंबर है।
1: हाँ नवलबा,
0: तो एक हूँ थाने गीत ढूंढो
1: हूँ
0: दिन बदगो।
1: हाँ सा
0: दिन बदगो जो देखा है कि भाई मन में कई की कर ले ठीक है हूँ देखो थे आज थारे उजास है जी को ये मैं हूँ है जी को साधनों कर दूँ
1: करो सा।

0: देखियो दिन जल जाए
1: जोरदार गीत गाए भाई,
0: मैं तो कहीं गीत रानी गीत रहा हूं नहीं। वो हरजीश है जी को कह निमन है जी को कह के भाई डाब दिया
1: हाँ।
0: आप बात है
1: गीत नवलबा आज मैं विगत बार जानकारी दे दू आपने आज जी का फोत है दू पहले जानकारी फोत है पहले नाम है अपने गीतकार योगेश जी 29 मई 2020 ने फोत होया प्रसिद्ध बॉलीवुड का गीतकार लेखक है मुख्य रूप 1987 दशक में प्रसिद्ध गीत लिखा बिमु एक गाना जी को आज आप बजाया नहीं सर
0: जल्दी मैं देखियो धार्मिक ज्ञान
1: है लिखियो
0: लिखिया भाई देखे चौका गीत रहा लेकिन ज्ञान चौकी बात ही और क्या नहीं गीतकार अदाकार फनकार है जी को है अपन मार्ग बतावे मंद राजी करे
1: करे
0: तो आने कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा एक हूँ हुनियो कमल भाई का बे डॉक्टर बशीर बद्रहा
1: भाई
0: है जो फोत होगा
1: हाँ।
0: तो बानी है जी को कितना गुल पेश करना
1: भाई
0: हाँ खासा गीत रहा दूजान घना लिखिया
1: लिखिया
0: ठीक है नी तो बड़े
1: आगे ऐसा चौधरी चरण सिंह जी 29 मई 1987 फोट होया
0: हाँ।
1: अपने भारत का पांचवा प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख किसान नेता
0: अरे भाई हूँ चरण सिंह जी उमड़ी हूँ
1: हाँ।
0: पतला बीघा गोरा गठा और कहो मैं तो क्या विदेश में पढ़ाई करना यान पासा है जो गरीब गुरबा ने किसान मजदूर हक कूदू मैं घना कह नहीं की भाई आप संघर्ष करिए
1: हाँ, जिंदगी समर्पण कर
0: हाँ कर दी सर मैं देखो अखबारों तो कह नहीं कहना कहीं है।

0: भाई देखो कि भाई प्रधानमंत्री थोड़ा दिन ही रिया
1: हाँ।
0: पर रिया जो रहा देखो भाई देखे कि काम भली थोड़ो करियो तो हकरो कर दिया तो आने कोई नहीं भूल सके। चौधरी चरण सिंह जी ने है जो कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल जनावा बड़े
1: आगे ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी 29 मई 1977 ने फोत होया हासा अपने जाना माना भाषाविद साहित्यकार रहा अने लोकप्रिय कला प्रेमी भी हा। भारत सरकार आने पद्म विभूषण दियो
0: सा दियो सा के देखो के भाई गुड़ी मिन खा
1: हाँ सा
0: और चौका काम कर गया तो बे को भूली जानी कोटि कोटि नमन है मलड़ेरा फूल चढ़ाऊ बड़े।
1: आगे ऐसा लोक राम नयन राम शर्मा 29 मई 1933 ने फोत होया हा अपने स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार संगठन करता हा। वाराणसी में रहता समय आना परिचय बंग बंगवाला जी का हनीसा बानु होयो और फचे आप रहे स्वतंत्रता सेनानी।
0: हाँ भाई देखे आजादी का दीवाना हाओ
1: हाँ।
0: और जुलम अत्याचार सहन करिया चौधरी चरण सिंह जी करिया नहीं करिया नहीं कह नहीं कितना मिन्न करिया
1: हाँ।
0: जब आज अपन आजाद हान अपन कह नहीं कह खुली हवा में सांस लेवा
1: लेवा
0: तो आने कोई नहीं भूल सके आने भाई परबाते पौर धोग दा कोटि कोटि नमन करा और मंदड़ेरा फूल चढ़ाऊ बड़े।
1: आगे ऐसा अजीत जोगी 29 मई 2020 ने फोत होया हसा
0: हाँ।
1: प्रमुख राजनेता छत्तीसगढ़ रा पहला मुख्यमंत्री हा नवला
0: हाँ सा हाँ। अजीत जोगी कह नहीं की पुख्ता मिन का और चौका काम कर गया है जो राज थरपी जियो नवो कह नहीं की भाई राज्य बनियो
1: हाँ सा
0: उन्हें पहला मुख्यमंत्री बनिया तो एड़ा कह नहीं आदर जो मैंने कहा तो आने कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ाऊ बड़े।
1: आगे ऐसा पृथ्वीराज कपूर 29 मई 1972 ने फोत होया हसा
0: हाँ।
1: सिनेमा जगत रा रंगमंच रा प्रमुख स्तंभ मु एक हासा बतौर अभिनेता मुख्य फिल्म में आप करियर की शुरुआत करी 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना करी और यानी फिल्म में कल आज और कल प्यार किया तो डरना किया और आवारा जड़ी फिल्म यानी
0: गड़ी भाई पृथ्वीराज कपूर तो कह नहीं गूंगी काली बोली फिल्म आती जल रहा
1: हाँ सर
0: और कपूर खानदान बार ला रहे है जो घणो काम करियो फिल्म में और दूसरी बात आ गए है जो गुगल आजम फिल्म में है अकबर बादशाह फिल्म
1: हाँ, मुगले आजम में
0: हाँ उनमें फजे बे कौन दे जस्ता है
1: जचिया नवला
0: अरे पूछो मत थे बात करो देखो भाई बोलता जदेड़ो लाग तो भाई अकबर बादशाह बोल
1: हाँ
0: है कौन
1: किरदार पूरा निभाया
0: बात करियो सा तो एड़ा कह नहीं बिरला मिनक है
1: ऐ
0: कह नहीं के भाई कदी कितई कह नहीं जुगो जुग बीत जाई नहीं
1: हाँ
0: तो ये जन्मजात कलाकार है तो आने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है और मंगलेरा फूल चढ़ावा ना मैं आर मात कोई कैमरो फेरियुड़ हुए
1: हाँ सर
0: तो वो कोई गीत रो थर ध्यान में वे तो हुना दो
1: हुना हूँ सर।

0: वाह भाई वाह, ओ हो जी हो रो कर जड़ो कह नी बिलमऊ नो गीत सुने।
1: हाँ
0: एड़ा थारे मंजरे मैं कह नी कह कह के भाई फूल खिले नी आ खिलना ही सही है भाई खोंदरा दौड़ा है।
1: हाँ
0: भले
1: है तो आप हो तो है जी का आज जन्मे जो पहले नाम है अपना रामानंद चटर्जी 29 मई 1861 कलकत्ता में जन्मे आसा। कलकत्ता में स्थित पत्रिका मॉडर्न रिव्यू का संस्थापक संपादक अन मालिक अन भारतीय पत्रकारिता रहा है जनक कहवे
0: खबर नवी सा भाई।
1: हाँ सा।
0: और पहलो पहल हरुआत करी तो कह नहीं के हाँ हो रही तो करी को नहीं।
1: हाँ।
0: और कह नहीं के भाई यार माते कई जुलम अत्याचार होया वेला
1: होया सा।
0: और आने हर जगह कोई नहीं भूल सके जग चावा काम करन गया कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा भूल चढ़ाऊ बड़ा
1: आगे ऐसा कन्हैलाल मिश्र प्रभाकर 29 मई 1906 देवबंद यूपी में जन्मे आसा। अपने हिंदी रा कथाकार निबंधकार पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी हान।
0: ओहो कह नहीं आजादी रा दीवाना।
1: हाँ
0: और पता कह नहीं सरस्वती पुत्र चौका काम कर गया तो आने कोई नहीं भूल सके पर बाते पौर धोख दा कोटि कोटि नमन करा मंदड़ेरा भूल चढ़ाऊ बड़े।
1: आगे ऐसा हीरा भाई बरोडकर 29 मई 1905 मुंबई में जन्म लियो हसा। अपने किराना घराने शास्त्रीय गायिका ही कला क्षेत्र में आने पद्म भूषण सम्मानित
0: हर चीज बात है भाई देखो आप रो काम आप री ठोड़ मा चोको करियो।
1: हाँ सर
0: आन कोटि कोटि नमन करा मंदड़ेरा फूल चढ़ावान बड़े।
1: आगे ऐसा डॉक्टर एल मुरुगन 29 मई 1977 कोनूर तमिलनाडु में जन्मे हासा। वर्तमान में सूचना प्रसारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री है और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री रूप में भी कार्य कर रहे
0: हैं। हर बात है भाई देखो निकड़ा दे आयोड़ा है।
1: हाँ सर
0: और सो का काम करे तो भगवान आने हाजत हाजर आके कोटि कोटि बधाई है।
1: हाँ
0: और कह देखो अगर सो का काम करने वाला ने कोई नहीं भूल सके ना के देश रा महकमा हमारे।
1: हाँ नवलब
0: ठीक है नी तो ए कोई कम बात को है नी।
1: हाँ
0: तो कह नहीं कि भाई कम बात आलो काम ही नहीं करनो ने मैं देखे हकरी बात रो चौकी बात रो कोई काम करो।
1: हाँ सर
0: मने एक अर्जी सी हुनो
1: हुनो सर।

0: वाह भाई कमल भाई वाह, नियाल कर दिया हम चारू मेर क्या नहीं के मारे तो अंडी आन दोगो।
1: हाँ
0: आज गीत रही जो है जो को थारा वाला बट मने ये का दो हकरो ही लागो और मैं है जो को क्या नहीं भाई देखे क्या मैं थाने थोड़ो के तपड़े में रसोड़े में तो हर देनो ही पड़े
1: देनो पड़ने
0: ठीक है नहीं तारे मन चाहे जो को थे बना लो।
1: हाँ सर।
0: और क्या नहीं भोजनिया तैयार कर लो भेड़ू हाथ ही करा हूँ फेर लू माड़ा।
1: हाँ नवलब।
0: और भाई देखे माड़ा फेर बैठो हूँ जीते है जो क्या थे रसोड़ो तैयार कर लो और मैं तारा ही खासा ऊंचा आएगा है दिन ही बदगो है तो हम भाई शरण ले वही राम राम, राम।

ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें हैं। सबीर का लिखा ये गीत, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम दीवाना।

अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रही हैं लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से ये नगमा। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। सनम बेवफा इस फिल्म से विपिन सचदेवा की आवाज़ में अब आपको ये नगमा सुनवा रही हैं। सावन कुमार ने इसे लिखा है महेश

दिल है कि मानता नहीं। आइए इस फिल्म का गीत सुने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। फैज अनवर का गीत, नदीम श्रवण का संगीत है।

दिल। इस फिल्म से अब उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत आपको सुनवा रही हैं। इसे लिखा है समीर ने।

सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में संतोष आनंद का लिखा ये नगमा अब आपके लिए है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम प्रेम रोग।

0: प्रेम रूप फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दो

170,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में

जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000

ये गजल आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में, इब्ने इंशा का ये कलाम था। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए पहला गीत आपको सुनवाते हैं, छुपा रुस्तम फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, नीरज के बोल, संगीत SD बर्मन का।
1: धीरे से जाना खटियन में।

पड़ोसन फिल्म सी किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा राजेंद्र कृष्ण का लिखा आपको सुनवा रहे हैं आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में।

आइए अब सुने बुड्ढा मिल गया, इस फिल्म से मजरूह का लिखा ये नगमा। आर डी बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ है।

शर्मिली फिल्म से नीरज का लिखा ये नगमा अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। संगीत SD बर्मन का है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी का गीत, एस डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम आराधना।

फिल्म संगीत के आखिर में ये नगमा हम सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में नमक हराम फिल्म से आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत है।

नमक हराम फिल्म के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अब दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रोग्राम बन चाहे गीत। दोस्तों नमस्कार, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से प्रसारित हो रहा है ये प्रोग्राम, नाम मनचाहे गीत। इस प्रोग्राम में दोस्तों आपको मालूम है हम आपकी पसंद के नगमे शामिल करते हैं। हर मंगलवार और शुक्रवार ये प्रोग्राम पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक। मनचाहेगी 531@gmail.com इस ईमेल पते पर आप अपना मेल हमें भेज सकते हैं। पसंद का गीत, फिल्म का नाम और गीत पसंद करने वालों के नाम। इधर पहुंचा आपका ईमेल हमारे मेल बॉक्स में और उधर हमने रवाना किया आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर। तो देर मत कीजिए, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म और ये है प्रोग्राम मनचाहेगी। फिलवक्त आपका ये दोस्त सिद्धार्थ शर्मा आपको नमस्कार करते हुए ये पहला गीत आप तक पहुंचा रहा है।

दोस्तों वाकई इस जिंदगी में कितनी ख्वाहिशें हमारे मन में दबी रह जाती हैं, काश ये हुआ होता तो यूं हो गया होता। लेकिन एक ख्वाहिश हम आपकी पूरी करने में सक्षम हैं, इसलिए कम से कम उस ख्वाहिश को आप जरूर हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी पसंद का गीत सुनने की ख्वाहिश, हमें मालूम है ये बहुत छोटी ख्वाहिश है, लेकिन ये छोटी सी ख्वाहिश भी आपकी पूरी करके हमें बड़ी खुशी मिलती है। फिलवक्त ये जो गीत था आप आए बाहर आई फिल्म से आपने सुना था, और इसे सुनने के लिए हमें खत लिखा कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी गीत के लिए मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना, एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मेल हमें मिला। इस गीत के बाद आइए अगला गीत आपको सुनवा देते हैं। इसे हमने लिया है दो रास्ते फिल्म से।

दोस्तों, ये प्रोग्राम चल रहा है मन चाहे गीत, और ये जो नगमा आप सुन रहे हैं, इसे सुनने के लिए कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने हमें ईमेल किया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार ने भी इसी गीत के लिए हमें ईमेल किया। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कपासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और सारी फूलवाले फैमिली। इसी गीत के लिए रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का भी हमें ईमेल प्राप्त हुआ है। प्रोग्राम मनचाही गीत और अपनी पसंद के गीत आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में। मेला फिल्म से ये नगमा आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

दोस्तों यह है प्रोग्राम मनचाहे गीत। अगला गीत आ रहा है आपके लिए इन सब श्रोताओं की पसंद पर। खरखड़ा चौबीसी से गोरू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोध और तमन्ना कांगड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सिद्धार्थनगर दरियापुर बागली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुषी श्याम कुमार। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। आप सभी की फरमाइश पर ये है अगला गीत आपके लिए।

0: जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने हमें ईमेल किया है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से हमें अपनी पसंद लिखते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने भी अपनी पसंद भेजी है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल आजाद। और ये हैं हमारी श्रोता राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य उगाला अंबाला हरियाणा से। शर्मिली फिल्म से आपने ये गीत चुना है सुनने के लिए।
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या

0: मत हमसे खुद से हम।
1: दोस्तों आपके घर तक हम पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद के नगमे। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहेगी, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ शर्मा। प्रेम कहानी इस फिल्म से अगला गीत आपके घर तक आ रहा है। गुवाहाटी असम से नरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या की पसंद पर। इसी गीत को वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी पसंद किया है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी ने इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी।
2: कहा आपका ये बजा ही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने गुलशन से।

जी हाँ, प्रोग्राम मन चाहे गीत में आप बने हुए हैं अपनी पसंद के गीतों के साथ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पोल और विलिस डिकैस्ट्रो हमें सुन रही हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनिजा और विमल अनिजा हमसे जुड़े हुए हैं।

माझियान सर धनम नीरड से अनिल जैन, संयम जैन, जैन साहब, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम और इनके साथी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका और वंश बत्ता ठीक इस वक्त हमें मेल कर रही हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा भी हमसे जुड़े हुए हैं। आइए अब सबकी पसंद पर आपको सुनाते हैं अमर प्रेम फिल्म से ये नगमा।

गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने हमें ईमेल किया है। वाढ़ी खाम गांव से अभी अभी मेल मिला है अनंता वाढ़े, रामेश्वर वाढ़े, शुभम साक्षी, खुशी और पूरे वाढ़े परिवार की ओर से। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल

शुभम साक्षी खुशी और पूरे वाढे परिवार की ओर से। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। चक 5 एमडी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और परवीर सिंह अपने आप को शामिल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा विमलेश और दिव्यांश बघेल और परिवार, आप सबकी पसंद पर ये आ रहा है महेंद्र कपूर की आवाज में आपकी रेडियो सेट तक आपकी पसंद का नगमा।

नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, जिला बेगूसराय से संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शुभताई, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप सबकी पसंद पर ये नगमा। फिल्म का नाम राजकुमार।

नांदेड येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल का मेल हमें मिला है। कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख का ईमेल हमें मिला है। वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़ी, राधेश्याम, रामेश्वर और साक्षी, अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से। आप सबकी पसंद पर ये गीत हमने दिया है, सौतन फिल्म से।

फिलहाल दोस्तों इस प्रोग्राम का ये आखिरी नगमा लेकर हाजिर हैं हम। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, सुनीता साहनी और संदीप माकड़ का ये संदेश। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, आप सबकी पसंद पर ये अगला नगमा जो इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा साबित होने वाला है आपके लिए, आपके रेडियो सेट तक।

0: जॉन जॉनी जनार्दन इस गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है मनचाहे गीत, खत्म करने की अपनी दोस्त सिद्धार्थ शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनचाहे गीत, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। समाचार दिल्ली से,
1: अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने

0: के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।